शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हुए स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीता जयरमन मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कुछ अपने विषय में, अपनी जिंदगी के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में, इस दुनिया में भला कौन है हम, क्यों हैं हम यहाँ। सीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा सा हमें बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं मैम?
1: थैंक यू। अभी फिलहाल तो मैं बेंगलोर में रह रही हूँ। मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे एंड गॉट मैरिड इन बॉम्बे, देन नाउ सेटल्ड इन बेंगलोर। एक्चुअली मेरी लाइफ पे ये सेकंड लाइफ है। द फर्स्ट लाइफ आई मैरिड टू अ पर्सन एंड हु आई लॉस्ट माय स्पाउस एक्चुअली एंड दिस प्रेजेंट हस्बैंड माय जयरामन was my schoolmate and we got married at age of 60.
0: Okay, that's very nice.
1: And good friends we met and we used to go everywhere together, and all the friends in our class, they all used to come with their spouse. Sir, mai aur Jairam akele the, so all friends telling me that why can't you it over and why can't it come forward, and with the permission, I should say, with the permission and agreement of our children, both his children and my children, we are staying together and running our life together, and it's my second life what I've got, and it's a beautiful life.
0: Beautiful. I must say, and friends, did you listen to it? It really doesn't matter whatever goes on in our life. We should keep on going. And more important thing is happily. We should be contented. We should be happy. We should be peaceful. So Sita ma'am has told her story, which is quite beautiful, quite peaceful. Okay, I mean, this is quite modern and, quite, I must say, encouraging for n number of people who are actually sulking in their skins. Ki kya hai, hamari zindagi khatam ho gayi, abhi kya karna hai, bas upar wale ke paas jane ka intezaar karte hain. I don't know, I mean, personally, mere ko ye cheez zyada jamti nahi hai. Well, kisi ki bhavnaon ko main chote hi pahuncha sakta, phir bhi, zindagi ko jeene ka naam hai. चलिए सीता मैम, हम जिस विषय में बात करने आए हैं उसको शुरू करते हैं। आजकल लोग धर्म और आध्यात्म यानी कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को बहुत इजीली मिक्स कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। कई बार गीता पढ़ने की बात कर दी जाती है, विच इज वेरी वेरी हाईली रेटेड, समझ में किसी को आता नहीं है। तो रिलीजन हुआ और आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी हुआ, मिक्स कर देते हैं। मैम, थोड़ा सा अंतर बताइए ना दोनों के बीच में।
1: श्योर। एक्चुअली स्पीकिंग ना, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बोथ आर सेम ओनली, इट्स नॉट द सेम एक्चुअली। व्हाट इज द व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज बिलीफ, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस,
0: राइट,
1: व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय एजेस through our families or communities, whatever you may say. But in a simple sentence, if you say, it's a structured path to connect with the God. Ultimately, religion also teaches that you believe this God, that God. And like, Hindus, we say Rama, Krishna and all. Like Muslims, they say Allah and Jesus in Christianity. So ultimately, the structure is to connect with the God. So that is what this spirituality does. So not much difference, but there is a difference.
0: Right.
1: And it all depends upon how a person takes it.
0: Okay.

0: is the discovery of self-discovery, feeling connected to God. That is the difference. So one has to understand, see, we cannot combine both together, but once if you want to enter into spirituality, first you should follow your religion also properly. You should not jump from one to another, you know. So like that, if you follow, definitely apna dono mein antar aap pehchan paoge.
1: Right, right. I get your point, ma'am. I get your point. ओके दोस्तों, आपको समझ में आया. सीता मैम बहुत आराम से समझा रही हैं कि अगर हम लोगों को, हमने रिलीजन को फॉलो किया फर्स्ट, रिलीजन को अगर, जो भी रिलीजन हमारा है उसमें हम लोगों को कोई डिफरेंसेस नहीं है. वट एवर रिलीजन वी आर फॉलोइंग, वी शुड फॉलो फर्स्ट एंड देन विल लीड, विल गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. दैट्स द पाथ. एंड उन्होंने बताया रिलीजन यानी कि धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ. And spirituality, adhyatma, is searching for ourselves to God. हम लोगों का connection कैसा है भगवान के साथ, उसकी खोज जो है वो spirituality है. Beautiful. Ma'am, ये definition हमें clear हो गई कि adhyatma, spirituality and religion, धर्म का meaning क्या हो गया. Now let's talk about methods. तो please मुझे suggest कीजिए ma'am, मुझे थोड़ा enlighten कीजिए, थोड़ा बताइए कि रिलीजन फॉलो करने की बात की ना पीछे आपने, सो हाउ शुड वी डू इट, मतलब मेथड 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल मेथड रिलीजन फॉलो करने के लिए.
0: अच्छा, मैं पहले स्पिरिचुअलिटी की बताऊं.
1: हाँ हाँ, ओके ओके. आपको जिधर से ठीक लगता है.
0: फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्पिरिचुअलिटी,
1: ओके,
0: पहले अपने को अंदर से देखना जरूरी है. सो स्टार्ट looking inside first, okay. आपने अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, मैं, मेरी इस जगह का मतलब क्या है. Where do we go for peace? All this will lead you to the spirituality. See, it's not necessary that आप बहुत सारे books पढ़ोगे, और books सारे books पढ़ सकते हैं, मगर उसमें क्या होते हैं, कभी we get confused. हाँ, कोई धर्म ऐसे बोलते हैं, कोई धर्म ऐसे, बट यू लिसन ओनली टू योर माइंड. वॉट एवर यू फील इज राइट फॉर यू इन अ राइट वे, यू शुड फॉलो दैट. दिस इज वॉट आई हैव बीन डूइंग एंड आई एडवाइज एवरीबडी टू डू द सेम थिंग, बिकॉज दैट इज हाउ यू लीड टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन, वॉट इज रिलीजन? रिलीजन इज अगेन, सी, वी हैव बीन ब्रॉट इन अ कम्युनिटी. And we, right from our childhood, we'll be following, our parents will say, go to temple, go do this puja, that and all, you know. So we just follow whatever our religion say. But in that, in due course, we have been, by going to this temple and everything, in due course, you develop into spirituality. This is what the difference between the religion and spirituality. How to enter into religion, how to enter into the spirituality.
1: ये तो spirituality के बारे में हो गया ma'am. अब religion के बारे में बताइए ना, what methods, practical methods की हम बात कर रहे हैं. कि आपने कहा ना कि हम एक religion follow करें, so how, how should we follow it?
0: So they see, रिलीजन फॉलो करने के लिए कहेंगे हम लोग है ना, जंप नहीं करना चाहिए दिस रिलीजन टू दैट रिलीजन. सो यू रियली गेट कंफ्यूज. सो वंस इफ यू आर बॉर्न इन अ वॉट एवर द कम्युनिटी इज, ओके, सो यू ट्राई टू फॉलो योर ओन रिलीजन. देर इज नो हार्म इन फॉलोइंग एनी रिलीजन, बट यू हैव टू स्टिक टू योर ओन रिलीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड यू शुड से, अवर रिलीजन एज फॉर द हिंदू धर्म, वी गो टू टेम्पल, राइट. हम लोग के ना पूजा करते हैं घर में, कुछ शांति वगैरह करते हैं. सो यू शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय अदर्स हू इज एट यू, अरे तुम्हारे तो हिंदू में बहुत सारे गॉड है. नहीं, इट्स नॉट दैट. So you should think that our Hindu dharma is so huge, it has spread everywhere, so that is why so many gods and goddesses. But where I mean that if Christianity follows one Jesus, it's not wrong. See, they are strong and they are able to follow one religion. There is no harm in following one religion, and you should follow your own religion.
1: Okay.

0: Let me understand this, ma'am. Following one religion means, if at all I am a Christian, let's say. So going to the church every Sunday and praying to God, praying to Jesus, is the method of following religion?
1: See, one has to follow. At the meantime, see, one should be a good human, first of all.
0: Right.
1: All the religion teaches only one thing, be a good human. See, doing good things to the society, whatever the good things you are following, that will be followed by your next generations, you know. So we are the pillars, the parents are the pillars to start our new next generation. So when you don't do anything properly, obviously your children will not be following. So it all depends upon the parents who are the pillars of the family.
0: Okay, that's very nice. So, दोस्तों, जिस तरीके से सीता मैम ने यहाँ पर हमें बताया रिलीजन किस तरीके से फॉलो किया जाता है और किया जा सकता है, एक बहुत ही पवित्र तरीके से, पायस तरीके से, और हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो भी सीता मैम ने बताया. चलिए यहाँ पर एक हल्का सा. यस मैम, प्लीज.
1: स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट गोइंग टू टेम्पल, पूजा करना. मैं ये नहीं कर रही हूँ, दिस विल नॉट हेल्प. स्पिरिचुअलिटी हैज गॉट द रियल मतलब है कि हमें अपना अपने आप के अंदर की शांति को ढूंढना चाहिए और कि विच विल टेक यू टुवर्ड्स द गॉड, भगवान को ढूंढना है. दिस इज फ्रॉम जर्नी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. व्हेन यू गेट डिस्टर्ब्ड एंड नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, मन को एकदम शांत और स्टेबल रखना चाहिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, पैनिक होने से बात और बिगड़ जाती है. अंदर की स्पिरिचुअलिटी जागने से यू योर सेल्फ कैन फाइंड द डिफरेंस इन यू एंड दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस ऑल्सो. कभी कोई साधु संत को देखते हैं, who are too much into spirituality, you can really see the bliss on their face. Why this is coming? Because they've already understood, they have gone inside and they have understood the reason of their coming into this world. That is why Ramakrishna Paramahamsa, Satya Sai Baba, and all those people, Vivekananda, everybody, because they understood what is really is there inside them, what for they have come to this world. So they fulfilled all the things, what the reason for what they came into this world.
0: Right, ma'am, right. That is so beautiful. दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. भला क्यों स्पिरिचुअलिटी को हम क्यों प्रैक्टिस करें, रिलीजन को हम क्यों फॉलो करें, विचार कीजिए, सोचिए. सीता मैम ने अभी जो कहा उसके बारे में जरा सोचिए. हम वापस आते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के बाद. मैम, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस.

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सीता मैम, आपने बहुत कन्वीनियंटली, बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया कि किस तरीके से हम लोग आज के वक्त में स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब हम लोग अपनी कंपनीज में देखते हैं। बट हमारे पास बहुत इजीली टूल्स अवेलेबल हैं जो हम अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपने पुरानी बात भी बताई कि जब आपकी फैमिली में आप खेल के आते थे तो क्या क्या होता था। ओके, नाउ हुआ क्या मैम, आपने कहा कि उस जमाने में जब हम लोग थे तो टीवी नहीं था, फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो कंपैरेटिवली इट वाज इजी कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं। लेकिन आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है मैम, अब उसको हम डिनाय तो कर नहीं सकते, उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक भी नहीं सकते। आफ्टर ऑल अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया को ही यूज करते हुए कर रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया को हम अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस होने के लिए कैसे यूज करें मैम, इसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए ना।
1: सोशल मीडिया इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, इट ऑल डिपेंड ऑन एन इंडिविजुअल हाउ ही और शी टेक्स। एक्चुअली स्पीकिंग क्या होता है, आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज, ऑल दोज मीडियाज आर देयर, इन दैट यू कैन रियली See, even when you are traveling also, or when you are stressed off, you can hear to nice soothing bhajans and nice soothing instruments, which will release your stress. Because that is what is happening in all those this thing, you know, like stress management companies. What they do is they make you sit silent, calm, and they play some music, and they say that you do meditation. See, meditation is not that easy what you all think, but it will make you perfect by doing practice. To me, when I started my meditation, hardly I was able to sit for 5 minutes. So you cannot expect, aaj maine baith gayi, so tomorrow I should get the result. Nothing you can get immediately. It is not Swiggy or Maggi, within 2 to 10 minutes you get everything, right? Sitting at home you get everything. It's not that way, but the practice makes you perfect. You should they have to put little, for anything you have to put little effort. Without effort nothing is available, nothing you gain, right? So here spirituality is also like that only. You social media to use kijiye, magar not too much. See, whichever is good, there are so many good things also in social media, right? So you'll have to get some nice quotes which sometimes enters our heart and changes the whole situation. See, you do know, aapko pata nahi chalti hai ki kab bhagwan ka call aapke aur aati hai. So you won't know. So you will be listening to something, in that you may get some answer. So keep listening to such nice quotes, read some nice books. See, if you don't know to read in the book, you go in the e-book. You can go through your e-book and you can read some good books and can gain some nice, you know, knowledge.
0: जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया को सीता मैम भी रिजेक्ट नहीं कर रही हैं, बहुत कंफर्टेबली, ऑब्वियसली उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, उसको देखते हुए उनको पता है क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, बेनिफिशियल है, और क्या चीज़ हमारे लिए ख़राब है। मैं मानता हूँ इस दुनिया में किसी को समझाना कि ये चीज़ आपके लिए ख़राब है, समथिंग लाइक इफ इट ऑल समबडी इज स्मोकिंग और मे बी समबडी इज हैविंग वाइन अल्कोहल, अगर हम उसको सिखाने जाते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अंदर अंदर उसको भी मालूम होता है कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है मेरी गलती है, लेकिन उस वक्त तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आता है। सेम वे आज के सोशल मीडिया को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करने की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों एक मानवीय संरचना है, एक साइकोलॉजी है, टुवर्ड्स नेगेटिविटी वी गो वेरी फास्ट, बट हमें मालूम है व्हाट इज पॉजिटिविटी, व्हाट इज नेगेटिविटी। सीता मैम वही समझा रही हैं। आइए दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए सीता मैम की जो बातें हैं उनको विचार करते हुए एक भजन सुनिए, let me come back.

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सीता मैम, कई सारी बातें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है आज आपकी बातें सुनकर। बहुत सारे यंग जनरेशन भी आपकी बात सुनकर महसूस कर रही होगी कि आप जो कह रहे हैं वो सेंसिबल है। मोर ओवर, अपनी जिंदगी को खुश और पीसफुल बनाने का जो तरीका है वो आपने एग्जेम्प्लीफाई भी किया है इस उम्र में आके। तो जाहिर सी बात है, यंग जनरेशन को तो आपसे कनेक्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दे वुड फील हैप्पी दैट ओके, सीता मैम इज वन हु इज क्वाइट मॉडर्न एंड ट्राइंग टू मेक हर लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी, तो व्हाई शुडंट वी फॉलो हर। तो अगर यंग जनरेशन आपके इस प्रोग्राम को सुनकर सीता मैम आपको फॉलो करने की सोचे कि चलिए सीता मैम से कुछ सीखते हैं और शायद सीता मैम कुछ अच्छी बात कह रही हैं, सो लेट मी लर्न फ्रॉम सीता मैम, तो आप यंग जनरेशन को 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड देना चाहेंगे सो दैट दे कैन बिकम रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल? प्रैक्टिकल मेथड बताइए मैम।
1: अपने आप पे करना है या अपने बच्चों के ऊपर करना, ये जरा बताइए मुझे।
0: मैम फ्रैंकली जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत लोग पेरेंट्स हों, हो सकता है उसमें बहुत लोग यंग जनरेशन हों, उनके बच्चे हों। अब ओके, ऐसा करते हैं मैम, बिल्कुल किसी भी एक प्लेन एंड सिंपल पर्सन के लिए जो भी आपके इस प्रोग्राम को सुने।
1: First of all, the charity begins at home, okay. Right? So, बच्चों को जो करना चाहते हैं वो अपने

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं।

लेकिन हमारे मारियो वो दुनिया कागज पर पकड़ लेते थे और शायद इसीलिए उनके स्केचेस में एक अजीब सी जान थी। वो जिंदा लगते थे, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, वो उनकी नजरों से देखी हुई जी हुई जिंदगी थी। हम कहते हैं ना आंखों देखी, बिल्कुल वैसी। अगर आज आपको एक स्केच बुक दे दी जाए और कहा जाए जो आपके आसपास है सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसी का स्केच बना दो, तो आप क्या बनाएंगे? अपना बॉस, घर का वो रिलेटिव जो हर शादी में बिना बुलाए एडवाइस देता है, चाय की दुकान पर बैठने वाले वो अंकल, या फिर अपना खुद का चेहरा। और अगर आप अपना चेहरा बनाएंगे तो प्लीज फिल्टर लगा कर मत बनाना, यहाँ पे थोड़ी ऑनेस्टी रहने देना। मारियो की कला का असली मजा यही था, उन्होंने जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कभी नहीं की, उन्होंने जिंदगी को वैसे ही देखा जैसे वो थी, थोड़ी अजीब, थोड़ी खूबसूरत, थोड़ी फनी और बहुत बहुत बहुत सारी इंसानी। और दोस्तों, इसी लेगेसी को याद करते हुए मारियो मिरांडा की 100th बर्थडे एनिवर्सरी के मौके पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट ने एक खास एग्जीबिशन किया, उसका नाम था मारियो एट 100। जगह थी इंडियन कार्टून गैलरी बैंगलोर। इस एग्जीबिशन में मारियो के सिलेक्ट फोटोग्राफ्स, पॉलिटिकल कार्टून्स, पॉकेट कार्टून्स, कलरफुल इलस्ट्रेशंस और कर्नाटका से जुड़े उनके यादगार स्केचेस देखे जा सके। यानी मारियो को सिर्फ याद नहीं किया गया, उनकी दुनिया को दोबारा देखा गया। तो दोस्तों, मारियो मिरांडा की कहानी सिर्फ एक कार्टूनिस्ट की कहानी नहीं है, ये एक नजर की कहानी है, एक तीखी नजर की। दुनिया सब देखते हैं लेकिन हर कोई नोटिस नहीं करता। मारियो ने नोटिस किया, उन्होंने आम आदमी में कहानी देखी, भीड़ में कैरेक्टर्स देखे और रोजमर्रा की उलझन में ह्यूमर देखा। शायद इसीलिए उनकी ड्राइंग्स सिर्फ कागज पर बनकर नहीं रह गई, वो जिंदगी से जुड़ी हुई लगती थी। तो आज जब आप घर से बाहर निकलें, थोड़ा गौर से देखिए चाय की दुकान को, बस स्टॉप को, अपने ऑफिस को, आसपास के बाजार को और अपने आसपास के लोगों को भी। हो सकता है आपको भी कोई ऐसा सीन मिल जाए जिसे देखकर आपका भी मन कहे अरे इस पर तो मारियो जी एक कमाल का कार्टून बना देते। दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर, आपकी तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। याद रखिए, जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस नजर बदलनी पड़ती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था भाई, पता है? कोई अगर अकेला बैठा हुआ ऐसे हंस रहा तो लोग कहा करते थे, भैया इस पे भूत प्रेत का साया है, इलाज विलाज कराओ, झाड़ फूक कराओ। लेकिन आजकल कोई अकेला बैठा हंस रहा हो ना तो कहते हैं, भाई वो मैसेज हमें भी फॉरवर्ड करना जरा।

द साउंड ऑफ म्यूजिक के पीछे की अनकही दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो दातिया भील 90.8 FM पर बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर, आपकी तनुषा। दोस्तों, आज की बातों में हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें थोड़ा सिनेमा है, थोड़ा ह्यूमर है, थोड़ा दर्द है, और एक ऐसा रिश्ता है जिसे नाम देना शायद जरूरी ही नहीं था। जरा सोचिए, एक सुपरस्टार एक्ट्रेस, एक सीरियस शेक्सपियर एक्टर, दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया। हीरो को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं थी, हीरोइन को वो प्यार से नहीं, मिस प्रिस के नाम से कहते थे। और फिल्म का नाम गेस तो करिए, जी हां, द क्लासिक द साउंड ऑफ म्यूजिक। लेकिन हीरो का वर्जन था द साउंड ऑफ म्यूकस। ये कहानी है जूली एंड्रयूज एंड क्रिस्टोफर प्लमर की। साल था 1964। जूली एंड्रयूज मैरी पॉपिंस की जबरदस्त सफलता के बाद एकदम चमक रही थी, और क्रिस्टोफर प्लमर एक गंभीर शेक्सपियर एक्टर। उन्हें लगता था म्यूजिकल्स उनके लेवल की चीज नहीं, और फिर उनके सामने आ गई द साउंड ऑफ म्यूजिक। उन्हें फिल्म पसंद नहीं थी, जूली एंड्रयूज को वो मिस प्रिस कहते थे, और फिल्म को द साउंड ऑफ म्यूकस। अब आप ही सोचिए, जिस आदमी को आपके साथ रोमांटिक हीरो बनना है वो फिल्म को म्यूकस कह रहा है। लेकिन फिर आया साल्सबर्ग का वो गजीबो, और वहीं से सब कुछ बदल गया। फिल्म में एक रोमांटिक गाना था, समथिंग गुड। बारिश थी, रोमांस था, गजीबो था, और एक ऐसा फ्लोर था जहां पैर टिकना ही मुश्किल था। पहला टेक जूली फिसल गई, दूसरा टेक क्रिस्टोफर ने उन्हें घुमाया और वो खुद फिसल गए, तीसरा टेक क्रिस्टोफर का पैर गलत पड़ा और उनका एंकल हर्ट हो गया। लेकिन कैमरा चल रहा था, दोनों ने दर्द के बावजूद वो सीन पूरा किया, चेहरे पर रोमांस, और अंदर भाई पैर बचाओ। डायरेक्टर ने कट कहा, क्रिस्टोफर नीचे बैठ गए, जूली के घुटनों से भी खून आ रहा था, और इसी हालत में क्रिस्टोफर ने जूली को देखकर कहा, मिस प्रिस, अब या तो हम प्यार में हैं या फिर हम मर ही गए हैं। जूली हंस पड़ी और बोली, देन वी आर इन लव। क्या डायलॉग था! और सबसे खूबसूरत बात, जूली की सीन के एंड में जो हल्की सी लिंप नजर आती है वो एक्टिंग नहीं, वो असली चोट थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्रिस्टोफर प्लमर को एक और चीज से बहुत डर लगता था, गाने से। उन्होंने एडलवीज गाने से साफ मना कर दिया। फिल्म में उनकी आवाज को किसी और सिंगर की आवाज से मिलाया गया। लेकिन शूटिंग के आखिरी दिन डायरेक्टर रॉबर्ट वाइज ने कहा, आज तुम्हें इसे लाइव गाना होगा, सामने ऑर्केस्ट्रा, 200 लोग, पूरा सेट और क्रिस्टोफर डर से बिल्कुल घबराए हुए। तब जूली ने दूर से उनकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, प्लीज। क्रिस्टोफर ने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया, एक ही टेक, जी हां, वन टेक। आवाज कहीं कहीं कांपी,
लेकिन वही तो उसकी खूबसूरती थी। वो परफेक्ट नहीं था, वो सच्चा था। और सेट पर जूली एंड्रयूज की आंखों में आंसू आ गए। फिल्म में जो आंसू आप देखते हैं वो असली थे दोस्तों। अब सवाल आपके लिए ये है कि क्या जूली और क्रिस्टोफर कभी रिलेशनशिप में आए? नहीं दोस्तों, दोनों ने ही दूसरे लोगों से शादी की, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे शायद रिलेशनशिप कहना छोटा पड़ जाता। 56 इयर्स तक हर साल क्रिसमस कार्ड्स एक्सचेंज किए गए। क्रिस्टोफर लिखते योर कैप्टन और जूली यो मारिया। बस ना कोई बड़ा दावा, ना कोई फिल्म जैसा रोमांस, सिर्फ एक रिश्ता जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। 50 इयर्स बाद, जी हाँ, 2015 में द साउंड ऑफ म्यूजिक के 50 इयर्स पूरे हुए। दोनों ऑस्कर्स में साथ आए, हाथ में हाथ डाले। क्रिस्टोफर ने जूली के कान में कुछ कहा और जूली हंस पड़ी, और दोनों को देखकर ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, फिल्म को 50 साल हो चुके थे, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन एक दोस्ती अब भी वही है। 5 फरवरी 2021, क्रिस्टोफर प्लमर का 91 साल की उम्र में देहांत हो गया। जूली एंड्रयूज को जब यह खबर मिली तो उनके मुंह से सबसे पहले चार शब्द निकले, आई हैव लॉस्ट माई कैप्टन। उस दिन वो अपने गार्डन में गई और उनके लिए एडलवाइज गाया, अकेले अपने कैप्टन के लिए, एक ऐसी आवाज में जो शायद सुर में बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, दिल में बिल्कुल सच्ची थी, और शायद क्रिस्टोफर को भी वही पसंद आता। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी कहानी को कोई नाम नहीं दिया जा सकता? ना वो सिर्फ दोस्त है, ना सिर्फ कलीग, ना कोई रिश्तेदार, बस एक ऐसा इंसान जिसके साथ गुजरा हुआ वक्त आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। कभी कभी ना, हर गहरे रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग बस हमारी कहानी में एक खूबसूरत धुन की तरह बजते हैं और फिर जिंदगी भर सुनाई देते हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर प्लमर ने द साउंड ऑफ म्यूजिक को शुरू में द साउंड ऑफ म्यूकस कहा था। जूली एंड्रयूज उनके लिए मिस प्रिस थी। फिर एक गजीबो में दोनों फिसले, एक का एंकल हर्ट हुआ, दूसरे के घुटने छिल गए, और एक रोमांटिक सीन के बीच एक उम्र भर की दोस्ती ने जन्म लिया। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी परफेक्ट मोमेंट से नहीं बनती, वो बनती है फिसलने से, संभलने से, किसी के प्लीज कह देने से, और कभी कभी एक ऐसा गाना गाने से जिसे आप गाना ही नहीं चाहते थे। मैं हूं आपकी तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की और उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। आज जाने से पहले अपने उस इंसान को जरूर याद कीजिए जिसके साथ आपकी कहानी का कोई नाम नहीं है, लेकिन एक धुन जरूर है, एक धुन जो सिर्फ आप दोनों की है, आपका म्यूजिक है, आपका गाना है। मिलते हैं अगली बार, तब तक रिश्तों को नाम देने से पहले उनकी खूबसूरती को थोड़ा महसूस कीजिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो हुआ का भैया कि एक बार एक पत्नी ने पति से कहा, देखो मान लो तुम्हारी 2 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग जाए और कोई मुझे उठा के ले जाए, किडनैप करके ले जाए और तुमसे वो 2 करोड़ रुपया मांगे फिरौती के तौर पे, तो क्या करोगे? पति ने कहा, ये ट्रिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सवाल ही गलत है। पत्नी ने कहा, इसमें सवाल गलत होने वाली क्या बात है भाई? पति ने कहा, मेरी 2-2 लॉटरियां एक दिन में नहीं लग सकती।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपकी तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज की बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने कभी फोन उठाया है बस यूं ही, ऐसे ही? दिन में कम से कम 20 बार तो उठाते ही होंगे। कोई खास काम नहीं था, इंस्टाग्राम खोला और अचानक से कुछ सामने आ गया, आपके लिए बिल्कुल वही वीडियो। और आपने सोचा, अरे वाह, ये तो मैं अभी देखना चाहता था। फिर एक और वीडियो, फिर उसी टॉपिक का तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो, फिर उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट, और फिर आप फोन को देखकर बोलते हैं, भाई तुम मेरे दिमाग में हो क्या? कभी आपके साथ हुआ है? जरा सच सच सोचिए। आपने किसी दोस्त से बस एक बार किसी जगह का नाम लिया, यार गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं, और कुछ देर बाद फोन खोला और उसी जगह के शायद 10 वीडियोस आपके सामने आ गए। आपने मन में सोचा, मुझे रनिंग शुरू करनी चाहिए, और अगले दिन रनिंग शूज। आपने सोचा, मुझे पौंडिचेरी जाना चाहिए, और फीड में पौंडिचेरी ही पौंडिचेरी। आपने सोचा, मुझे हेल्दी खाना खाना है, और सामने सैलेड के वीडियोस ही वीडियोस। अब सवाल है, ये फोन हमें सुन रहा है या फिर AI और एल्गोरिथम्स ने हमें इतना समझ लिया है कि बिना पूछे ही हमारी अगली पसंद का अंदाजा लगा लेते हैं? सबसे पहले एक सिंपल सी बात, एल्गोरिथम को इंसान को समझने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ हमारे पैटर्न समझने होते हैं। आप क्या देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, किस वीडियो को तुरंत हटा देते हैं, किस पर रुक जाते हैं, किस पर दोबारा आ जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, किसको लाइक करते हैं, किसको शेयर करते हैं, किसको रिपोस्ट करते हैं, ये सब मिलकर एक तरह का डिजिटल नक्शा बना देते हैं। और हम भोले जीव सोचते हैं, मैंने तो बस एक वीडियो देखा था, और एल्गोरिथम कहता है हां जी, और मैंने वो भी नोट कर लिया। आपने एक कुकिंग का वीडियो पूरा देखा, एल्गोरिथम ने कहा अच्छा इनको खाना पसंद है, दूसरा देखा नहीं नहीं सिर्फ बिरयानी में इंटरेस्ट रखते हैं, तीसरा देखा ओ वेजिटेरियन पुलाव, और कुछ दिन बाद आपकी पूरी दुनिया में सिर्फ पुलाव ही पुलाव के वीडियोस। कभी कभी एल्गोरिथम हमारी पसंद से ज्यादा हमारी आदत समझ लेता है। मान लीजिए आप रात को 11 बजे फोन खोलते हैं, पहले एक कॉमेडी वीडियो, फिर एक न्यूज वीडियो, फिर एक ट्रैवल वीडियो, और फिर अचानक बस एक और वीडियो, और वो एक 45 मिनट्स का हो जाता है। कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि इनका रात का समय हमारे नाम है, और अगले दिन सेम समय सेम तरह के कंटेंट की बारिश होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन आपकी जिंदगी को आपकी तरह नहीं, आपके पैटर्न्स की तरह देखती है। अब इसी वक्त अपने फोन के बारे में सोचिए, आपकी फीड में सबसे ज्यादा क्या आता है? फूड, न्यूज, पॉलिटिक्स, ट्रैवल, म्यूजिक, फिटनेस, मोटिवेशन, कॉमेडी, या आपकी जिंदगी बदलने के 5 तरीके? और अगर मोटिवेशन वाले वीडियोस बहुत आ रहे हैं तो एक सवाल है, आप मोटिवेटेड हैं या एल्गोरिथम को लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है? थोड़ा सोचिए।
दरअसल एल्गोरिथम को एक तरह का डिजिटल आईना भी कह सकते हैं, लेकिन एक अजीब सा आईना है। नॉर्मल आईना आपका चेहरा दिखाता है, ये वाला आईना आपकी आदतें दिखाता है। आप किस चीज पर रुकते हैं, किस चीज पर गुस्सा करते हैं, किस चीज पर मुस्कुराते हैं और किस चीज को बार बार देखते हैं, ये हमें वो चीज भी दिखाता रहता है जिसे हम देखना चाहते हैं। यहीं से बात थोड़ी और गहरी होती है। आपकी फीड आपको बनाती भी है। आप एक चीज देखते हैं, एल्गोरिथम उसकी 10 और चीजें दिखाता है। आप उनमें से कुछ और देखते हैं, फिर वो उसी दुनिया की और चीजें लेकर आता है और धीरे धीरे आपकी पूरी स्क्रीन एक ही नजरिए से भर जाती है। इसीलिए कभी कभी जरूरी है कि हम एल्गोरिथम को भी थोड़ा कंफ्यूज तो करें। अगर रोज सिर्फ एक ही तरह की चीजें देखेंगे तो फोन कहेगा, अच्छा दुनिया ही बस इतनी सी है। कभी कुछ नया देखिए, एक नई किताब, एक नया गाना, कुछ नए विचार, अलग लोगों की बातें, कुछ ऐसा जिसे आपका दिमाग बोले, अरे वाह ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक सवाल जो आपके मन में हमेशा आता है, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे आ गया? इस पर सीधा कह देना कि फोन हर बात सुनता है सही नहीं होगा। बहुत बार जो हमें जादू लगता है ना, वो हमारे डिजिटल विचार से निकला हुआ अंदाजा होता है। हमने कुछ सर्च किया, किसी चीज पर रुके, किसी वेबसाइट पर गए, किसी दोस्त के साथ कोई चीज शेयर करी, लोकेशन या दूसरे संकेत मिले और सिस्टम ने इन सब को जोड़ दिया। रिजल्ट, आपको लगता है मशीन ने आपका मन पढ़ लिया, जबकि मशीन ने शायद आपकी आदतों का हिसाब पढ़ लिया। अगर एआई हमें इतना समझने लगा है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एआई हमसे पहले समझ जाए कि हमें क्या पसंद आने वाला है? हो सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां एक खूबसूरत बात याद रखनी चाहिए, इंसान सिर्फ पैटर्न नहीं है। आज मुझे चाय पसंद है, कल कॉफी पसंद आ सकती है। आज मैं जयपुर जाना चाहता हूं, कल बनारस। आज मुझे कॉमेडी चाहिए, कल शायद कोई पुराना गीत। इंसान बदल सकता है। एल्गोरिथम का काम है आपके कल का अंदाजा लगाना, लेकिन आपके पास एक चीज है जो एल्गोरिथम के पास नहीं है, आपकी विश, आपकी मर्जी और आपकी पसंद को बदलने की आजादी। आज घर जाकर अपनी फीड को थोड़ा ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए कि ये जो मुझे रोज दिखाया जा रहा है, क्या मैं वाकई यही देखना चाहता हूं? और अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, और अगर जवाब है कि अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहां कैसे पहुंच गया, तो समय आ गया है एल्गोरिथम को थोड़ा ट्रेनिंग देने का। कुछ चीजें हटाइए, कुछ नई चीजें खोजिए, कुछ अलग लोगों को सुनिए और कभी कभी फोन रख कर दुनिया को बिना फिल्टर के देखिए। एआई हमारे पैटर्न्स पढ़ सकता है, हमारी पसंद का अंदाजा लगा सकता है, हमारी स्क्रीन को हमारे हिसाब से सजा सकता है, लेकिन हमारी पूरी कहानी नहीं जानता। उसकी चाबी तो आपके पास ही है आज भी। इंसान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम कभी कभी खुद को सरप्राइज कर देते हैं, और शायद इसीलिए अगली बार जब आपको फोन बिल्कुल वही वीडियो दिखाए जो आप देखना चाहते हैं, तो हैरान होकर मत पूछना, तुम्हें कैसे पता? बस मुस्कुरा कर कहना, अच्छा एल्गोरिथम बाबू, तुम मुझे समझने लगे हो। फिर फोन साइड में रखिए और खुद से पूछिए, आज मैं तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला हूं और तुम्हें कैसे काम पे लगाने वाला हूं? दोस्तों, मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, आपकी आरजे तनुषा,
और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की सिर्फ एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 एफएम पर। मिलते हैं फिर किसी नए सवाल के साथ, और तब तक एल्गोरिथम को आपको चलाने मत दीजिए, उसे अपनी आदतों से थोड़ा चलना सिखाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो चाबी, वो चॉइस और वो आजादी आज भी आप ही के पास है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ट्रैफिक पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल वाले को रोक ला। कहां भागे जा रहे हो? चालान कटेगा तुम्हारा, रेड लाइट जम की है, नाम बताओ। बाइक वाले ने आराम से कहा, यज्ञ कतलन चराचरम रखमणीयम युयुत्सु। पुलिस वाले ने कहा, अब की बार छोड़ दे रहा हूं, लेकिन खबरदार अगली बार सिग्नल मत तोड़ना।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

0: सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।
1: मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक।

0: कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?
1: समय प्रतिकूल माना पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे भावना और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याबिल 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं हम उनका जीवन परिचय।
1: मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए के उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्यादुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अवुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है।
2: मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थी। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटेरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गठ्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोड़ी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गठ्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गाँव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्स स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा, मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है। लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे अम्मा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का, मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं बसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे, मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खसूसी मजमून चुनना थे, यानी अपने स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुतासर किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडले, प्रोफेसर नरसिंहा राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है। मेरे एप्टीट्यूड्स और

प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने दो मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बयक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुए। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊं। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तखलीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्र कर दिया गया 250 रुपए की महाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी यकताई खो बैठे हैं। बल्कि हमने एक और ही किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं और बेरहम भी, हसास भी हैं और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतह। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेढब नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम के सुकून और गहरे शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट तैयार करें
और वो वक्त से पहले

तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर एमजीके मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला, मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकुस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर एमजीके मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के ऊंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तदा थी, हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमरीका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशन अमेरिकन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है, जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की जूनियर्स और सबॉर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हतक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाकया हुआ, 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपाची। नाइकी अपाची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो खुशुन कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का, जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्ग्रीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेवारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है।
और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सुमीठा होए। थुम्बा में दो रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहनी दूसरा मैंने कहा। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर सारा भाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन V.S. नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर सारा भाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये सत्रें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो, जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए दो अहम वाकयात हुए। पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साल का प्रोग्राम तैयार हुआ जिसके पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साल का प्रोग्राम तैयार हुआ जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रुमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रुमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। ये मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर M.G. के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है।
और ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے. پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو. علم نالج بڑا کارآمد ہتھیار ہے, بہت کام آتا ہے. علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حقدار ہو گئے. علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا. ٹیم کی رہنمائی تبھی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو, اپ ٹو ڈیٹ ہو. کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں, اگلے دن کے کام کی تیاری کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں, گرو سمجھیں, اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو. جو کرو اس پر یقین رکھو, یا جس پر یقین ہو وہی کرو, ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے. ایس ایل وی پروجیکٹ کے پہلے 3 سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے اسرار کھلے, اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا. ریسرچ اور عمل, ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتہ چلنے لگا. کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے, لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے, ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے. کسی بھی تخلیق کی طرح ایس ایل وی 3 کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری. ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے, میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی. میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا. کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا, میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا. رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا. زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے. تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج, ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی. بہت دنوں تک بہت ملال لگا, سب بے معنی لگتا تھا. پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے, کہتے ایس ایل وی پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی. 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پوتے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے, اور ایک پڑپوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا, جھنڈا نہیں اتارا گیا, نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے. نہ سیاست دان تھے وہ, نہ ودوان کوئی, نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے, فرشتہ صفت, اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ, اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. ایس ایل وی 3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے ایس ایل وی 3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے ایس ایل وی 3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا,
चार स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी कजदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया। हम सब दम खुद रह गए, सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। तीन सौ 17 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, नुचड़ गया बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक और बहस मुबहसे के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोच कर मैं दिल को ढारस देता रहा। यह ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैं
मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी

0: अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए।
1: मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है।
0: मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद कतार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली दो दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत मैं यहां पहुंचा था। वो लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्ला खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। पहली जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकट रमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा ब दर्जा मिसाइल तैयार करने के, हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना खाब रेक्स को, यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को, मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकई हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सके जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो, या आम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1989 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरे मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, यह बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, दो चार बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल केएन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1,00,000 पेड़ों की कोंपले लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है, अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। '90 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है? 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था, चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सके, एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए।
2: दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए रेडियो टंटाविल 90.8 FM छाबो की आवाज, RJ भावना के साथ। बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी RJ राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
2: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं, वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है, फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
5: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो

0: गतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
1: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
0: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
1: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
0: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
1: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
0: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है और स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए डॉक्टर।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
1: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
1: जी
0: और डॉक्टर साहब,
3: क्या फाइलेरिया की दवाई
0: बचा जा सकता
1: है? जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
1: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
0: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
1: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
4: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
0: जी बताइए।
1: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
0: जी
5: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
6: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
8: नमस्कार साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी अब होने लगी है। खासतौर पर देखा जाए अब मानसून भी आने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे हमारे मौसम विभाग कह रहा है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो 15.2 mm की बारिश अभी तक हो चुकी है। तो खुशी की बात है कि इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान साथी अपनी भरपूर तैयारी करें, पानी संरक्षण को लेकर काम करें। खासतौर पर अगर हम देखें कि जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक सा कराएं, समतलीकरण करा लें, मेड़बंधान करा लें, तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं। और किसान साथी तालाब अगर है तो उसका जीर्णोच्चारण भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
9: जी हाँ, मानसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मानसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मानसून के चाल के बारे में बताएंगे, मानसून कैसा रहने वाला है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मानसून भी है फसलें भी हैं तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मानसून के बारे में। तो इस बार मानसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट।
10: भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मॉनसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मॉनसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मॉनसूनी बारिश के औसत से 96 से 104 प्रतिशत रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मॉनसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
11: जो आप काम करने को कह रहे हैं,
9: रिपोर्ट देखिए जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जैनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मॉनसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
12: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वेरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है, जैसे दिल्ली का अगर बात करें पिछले साल बहुत लेट में आया,
9: 25 के बाद
12: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है, तो लगभग जो प्रिडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
9: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह

0: फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान मक्का ज्वार बाजरा इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर ना जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
1: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
2: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं, तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो प्रबंधन करना चाहिए फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सीवर जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैंने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है, तो उसमें जो है आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसून की वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है, कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया, तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल अनंत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले, जो अनंता जी ने बताया कि आपकी खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, प्यास धरती की नहीं बुझती।
3: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो, लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है।

0: और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें, जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफॉल एरिया बोलते हैं कि जहाँ बारिश कम होता है, उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा, कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा, यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है उसका इस्तेमाल करें।
1: जी, यानी जनाब मनी जी, जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
0: बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है, तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खादी या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून, वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
1: जी, जी।
0: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
1: जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं।
2: देखिए, बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं, तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है, और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सभी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कॉमोडिटी है इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है, उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है, या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है, और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं, या हो सकता है उनके कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
1: जी,
2: है।
1: लेकिन
2: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं, बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
1: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
2: ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की, और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालें हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे, फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
2: समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है, धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और बालियां इनिशिएशन से और बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पे लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पे लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
1: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
3: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है, बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपकी बीमारियां आ रही है उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपका
1: मिट्टी को भी
3: दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, जलीय जंतु हैं,
1: प्रदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा।
3: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं, ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है, क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
1: बिल्कुल, देखिए यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा, इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में, ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मानसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं,

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहाँ हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है। एक है, एक नावकस्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है।
1: जी जी।
2: और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है, ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक्स,
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: बिहार में
1: जान भी गई,
2: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में।
1: जी, और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान है मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं, जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोस ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बना के पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए। इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या हमारा
1: हरी खाद वगैरह,
3: सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी

0: का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपरणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है
0: और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं। बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती है। अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और उसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें।
2: जी जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं, और विभिन्न जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पे आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी, मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप इसमें
1: ये बहुत अच्छा जानकारी। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
3: लाइटनिंग
1: बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रिडिक्शन भी पता चल सकता है।
3: देखिए बिजली का जो प्रिडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है, तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है आगे जाएगा, तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है, वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है। और जैसे बताया मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल।
1: जी
2: इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है क्योंकि उनकी पैदावार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका का संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव वह बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स की किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है?
3: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाएं, और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसम राम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है, 2500 मिलीमीटर एक्चुअली, 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर। तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसीलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी शिवेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
0: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने
1: हमारी
0: के लिए,
1: खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
0: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया,
0: एक्सपोर्ट धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है। तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें, और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड ड्राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मक्का ज्वार बाजरे को, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए, तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: खेत का पानी खेत में, गांव का पानी
0: गांव का पानी गांव में ही रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी, और हमारा मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: सफेद सोना भी कहा जाता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है, तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पर लगाएं, रेज बेड पर लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है, और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके वो भी लगा सकते हैं किसान भाई, तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बनाकर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी, या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम
1: बिल्कुल। और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहे समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसा कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस तरीके से,
0: लगभग जो है ये 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती है, तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो फूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं या किसी को इंसेक्टिसाइड डालना है तो उसके कूड़ के अंदर चलकर डाल सकते हैं, और जो एक्सेस पानी है वो कूड़ के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है, हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है।
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय पर ले सकते हैं, और जब मौसम आपका अच्छा है मतलब बारिश नहीं हो रही है उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं, या अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव न करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है, और जो पिछले कई वर्षों के सांख्यिकीय के आंकड़े हैं उनसे भी ये पता चला है कि अगर मानसूनी वर्षा, जैसे हम एक तो सिंचाई के रूप में पानी दे रहे हैं, दूसरा आपका जो मानसूनी वर्षा हो रही है, तो अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है, अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की। तो नहीं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है, फसल का चुनाव उसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है, अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को नवीन क्रॉप है जैसे धान है या कपास है या गन्ना वो वाली फसलें लगा सकते हैं, और या अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं, और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आप कर सकते हैं, इससे आपका नहीं रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी और आपकी जो है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो है बाजार भाव भी अच्छा
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसे आप पूछ रहे थे ना कैसे इंसेक्ट और डिजीज का प्रबंधन करें, और क्योंकि जैसे डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आती हैं। तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है। अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के हैं वहां से वो सलाह लेते रहें, और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते रहें, सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें, और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें। और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका।
1: बिल्कुल।
2: यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, एक भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक परियोजना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सलाह चलती है, तो ये हर केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी ये जानकारी जो है आप हर शुक्रवार और हर मंगलवार को ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, आगे आने वाले दिनों में क्या करवट बदलेगा, और मौसम आधारित कृषि प्रबंधन चाहे वो कीड़े भी
1: मतलब वो एग्री एडवाइजरी भी मतलब साथ साथ
2: कृषि सलाह भी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो देखिए कई तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए कि उन्हें सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप कृषि में अनुशासन के साथ नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको फसलों के रूप में देखने को मिलेगा, यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ है। छोटा सा ब्रेक।

0: સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM. આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें. तो आपको किस तरह का फर्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप?
2: नहीं, देखिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूं, कुछ कुछ राज्यों में जहां जो पेनिट्रेशन है, जिसको माना जाता है, बहुत ज्यादा है. महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है, जैसे वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है. लेकिन कुछ कुछ एरिया है, जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहां जहां नेटवर्किंग कम है, फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है. लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था, नियरेस्ट कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां मेंबर बन जाए, तो आपको देखिए एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था, और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं. तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले
1: जी
2: वहाँ दर्शन कर, वहाँ जाके विजिट करें
1: और
2: डिटेल उनसे ले,
1: विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे.
2: दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए, बट खुद का सेफ्टी के लिए भी. जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से 400 मिलीमीटर 500, पिछले साल देखे होंगे कि
1: काफी नुकसान भी.
2: तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नाव कास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी.
1: बिल्कुल. डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर मानसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मानसून का प्रिडिक्शन होता है तो अच्छा हुआ तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़बड़ रहता है तो मुरझा जाता है. तो इतना मतलब इतना प्रभाव है मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसे किस तरीके से उसका असर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में?
3: देखिए, मानसून का जो है हमारी खेती पे बहुत आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है हर मामले में, चाहे वो खाद्यान्न का उत्पादन है, चाहे दलहन उत्पादन है, चाहे तिलहन उत्पादन है, चाहे हमारी गन्ने की फसल है, चाहे हमारी धान की फसल है, सभी फसलों के लिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन होता है हमारा, और बरसात के दिनों में यदि पानी का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं और बरसात की सूचना मिल जाती है किसानों को, तो उनके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आ जाती है. वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है
1: अच्छी,
3: हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती. तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे एक्सपोर्ट में है, चाहे हमारा किसान की खुशहाली है, चाहे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है. तो उस सब में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये बहुत ही मतलब जरूरी है, और ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना और समय से होना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार.
1: डॉक्टर अंता, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जैसे कि अभी बताया कि मानसूनी वर्षा से काफी फायदा होता है, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पूर्वानुमान है उसकी जो सटीकता है उसमें काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम देते थे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो हम देते थे IMD से जो मिलता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाए जाते, लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया है.
1: बिल्कुल. तो
4: जैसे ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो है एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है, तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, सटीक होगी, और उससे जो किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा.
1: जी बिल्कुल. तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है, और खासतौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपने अपनी राय रखी, और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों तक. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सुबह है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना हमारे विशेषज्ञों द्वारा, ये जानकारी आपको दी जा रही थी। और खासतौर पर उन्होंने मौसम और खेती को हम किस तरीके से देख सकते हैं, खासतौर पर मौसम आधारित हम लोग खेती करते हैं कि अगर सामान्य से अधिक वर्षा हुई या सामान्य वर्षा हुई, किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, किस तरीके से हमें फसल को बोना चाहिए, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। हमारा वक्त हो चुका है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लेखिका, प्रेरणादायी व्यक्तित्व और अद्भुत जज्बे वाले इंसान के रूप में भी है। उन्होंने कानून की पढ़ाई गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से की, प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और साथ ही अपनी लेखनी के माध्यम से समाज, रिश्तों, संवेदनाओं और आत्मबल को बेहद गहराई से अभिव्यक्त किया। उनकी पहली पुस्तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म जैसे गंभीर विषय पर आधारित थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। और अब उनकी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म रिश्तों, आत्मसम्मान, हीलिंग और इनर स्ट्रेंथ जैसे विषयों को एक नई संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं लेखिका, वक्ता और राजस्थान सरकार की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर कोमल जैन का। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच आलोक जी।
1: तो कोमल जी, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की, बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब शुरुआत से ही कर लेते हैं और शुरुआत आपके बचपन से कर लेते हैं। बताइए कुछ अपने बचपन के बारे में, बचपन आपका कहाँ बीता, अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। आपका घर का माहौल कैसा था? फादर आपके जुडिशियल सर्विसेज में थे, तो क्या बहुत गंभीर वातावरण था? कुछ उसके बारे में बताइए हमें।
2: जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आलोक जी। मेरा बचपन जो है वो जोधपुर में बीता था और ये मेरे नाना नानी ने मुझे बड़ा किया था। टिल द एज ऑफ 8 years मैं अपने ननिहाल में ही बड़ी हुई हूँ। तो मेरे नाना जी का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्हें लोग जानते हैं और वो भी उसी विभाग में थे जिसमें अभी मैं हूँ। तो वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल डिविजनल कमिश्नर से रिटायर हुए थे। और मेरे नाना और नानी दोनों का ही मेरी एजुकेशन और स्पोकन इंग्लिश पे विशेष फोकस था। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश और राजस्थानी भाषा बोलने पे बहुत ज्यादा उनका जोर था कि मातृभाषा बोलो, मायर्ड भाषा बोलो और इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलो, ताकि आप ग्लोबली एक अपनी पहचान बना सको। तो आज जो भी मेरी स्पोकन इंग्लिश है उसका श्रेय मैं अपने नाना नानी को देना चाहूंगी।
1: That is wonderful. आपको तो बहुत ही अच्छा एक अपब्रिंगिंग मिली है और बहुत ही एक ऐसे माहौल में थी जहाँ बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई का वातावरण था, आपके सब लोग अच्छे अच्छी पोजीशंस पे थे। तो आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग जो है सेंट मैरीज स्कूल उदयपुर में हुई है, कुछ खास कोई उस दौर की याद हो, कोई आपके दोस्त की आपको याद हो उस जगह की या उस स्कूल का, कोई दोस्त आपके साथ हो, ऐसी कोई खास याद है?
2: ऐसी बहुत सी यादें हैं उदयपुर से। उदयपुर इज माय फेवरेट सिटी इन द होल वर्ल्ड। वो बहुत ही सुंदर शहर है और मैंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों सेंट मेरीज कॉन्वेंट उदयपुर से किया है। उस समय मेरे जो पापा हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उदयपुर थे और मम्मा वहाँ पे मीरा गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी। तो उस समय की कुछ यादें हैं जैसे कि लेक पिछोला में फैमिली के साथ बोटिंग करना और अपने भाई और अपनी दादी साहब के साथ सुखाड़िया सर्किल पे पैडल बोट चलाना, फतेह सागर पे वॉक और साइकिलिंग करना। और उस समय सेंट मेरीज में मेरी कुछ काफी दोस्त थे, लेकिन एक खास दोस्त थी मेरी जिनका नाम है रजनी कुमावत और वो अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विस में है। तो उनका और मेरा एक कॉमन शौक था गजलें सुनना। तो उस समय जगजीत सिंह जी की एक उनका एक एल्बम था मिराज, तो उसकी कैसेट उन्होंने मुझे दी थी और मैंने उसको काफी लंबे टाइम तक सुना था, तो ये एक बहुत सुनहरी याद है।
1: ब्यूटीफुल, मजा आ गया। तो आपको शुरू से ही जगजीत सिंह पसंद थे, तो आप थोड़ा सा आपके कानून की पढ़ाई की तरफ आते हैं। आपने कानून की पढ़ाई को अपना क्षेत्र चुना, ये कैसे कि आपके चूंकि फादर भी इसी जुडिशियल सर्विसेज में थे, तो इस वजह से या कोई और खास रीजन था?
2: सर मेरी जो कानून की पढ़ाई है उसके लिए मुझे मेरे नाना जी पन्ने चंदजी सिंह जी ने प्रेरित किया, जो कि खुद प्रशासनिक अधिकारी थे और उस समय पुराने समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर्स भी होते थे, तो उन्होंने मुझे लॉ के

0: इन अचीवमेंट्स ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और मुझ में एक हौसला जगाया कि मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है. और बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान, जो कि कंपैरेटिवली एक कंजर्वेटिव स्टेट है, मुझे सारे फीमेल कैंडिडेट्स में एक एग्जांपल सेट करना है और ऐसा करियर बिल्ड करना है कि मैं भारत देश में लोगों की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकूं और कॉमन पीपल से जुड़ सकूं.
1: तो चलिए, चूंकि आपने अभी बात तो वहाँ जगजीत सिंह जी की चला दी थी और आपकी अपनी फ्रेंड का भी आपको नाम याद आ गया था उसकी गजलों से, तो हम रुक के यहाँ एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं. बस थोड़ा सा पॉज लेंगे और फिर आई विल कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.
0: श्योर.

0: वेलकम बैक डॉक्टर कोमल। आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी हैं और लेखिका भी। प्रशासनिक जीवन और रचनात्मक लेखन, इन दोनों दुनियाओं को साथ लेकर चलना कितना चैलेंजिंग है, कैसे करते हो आप ये मैनेज, ये कुछ हमें भी बताइए।
1: जी आलोक जी, ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। एक टैक्सेशन ऑफिसर होने के साथ साथ एक लेखिका होना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। एक सरकारी अफसर होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों से बंधी हूँ, जबकि एक लेखिका के रूप में मैं अपनी कलम की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उपयोग करना चाहती हूँ। तो इन दोनों चीजों में सामंजस्य बैठाना काफी चुनौतीपूर्ण है, पर जितना हो सके मैं इसको बैलेंस करके चलती हूँ।
0: तो चलिए, अब मैं कुछ आपको पुरानी जिंदगी में ले जाना चाहता हूँ कि लेखन की शुरुआत कैसे, कौन सा ऐसा ट्रिगर था, या क्या ऐसा एकदम आपकी लाइफ में हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आपने लेखन शुरू किया? क्या डायरी लिखती थी आप, किस तरह, हाउ डिड यू स्टार्ट इट?
1: सर, मेरा सबसे पहला जो लेखन था वो एक लॉक डायरी से शुरू हुआ था। मेरे बचपन में मेरी मासी ने मुझे एक लॉक डायरी प्रेजेंट की, जिसपे एक छोटा सा लॉक लगाया जा सकता था। और ये एक पॉकेट डायरी थी। तो मेरी जो नानी सा है, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया, उनका नाम चंद्रकांता जी है, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि जब भी बैठो एटलीस्ट 4-5 लाइनें लिखो, अपने हाथ में हमेशा कलम और पेपर रखो, एक डायरी रखो और कुछ लाइन लिखते रहो, इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बनी रहेगी।
0: ये बहुत खूबसूरत बात है। तो मतलब आपकी जिस तरह से, अगर बड़े लोग आपको इस तरह से इंस्पायर कर दें लिखने के लिए डायरी का, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए फिर आगे आते हैं। आपकी पहली पुस्तक है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ये तो बहुत ही सीरियस सा विषय है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और रिसर्च बेस्ड भी है। तो आमतौर से लोग शुरुआत करते हैं, भाई कविता लिख ली, कहानी लिख ली, उपन्यास लिख लिया, लेकिन आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा विषय क्यों चुना?
1: सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म का विषय जो है वो हमेशा से मेरा पसंदीदा विषय रहा है। और मेरी डॉक्टरेट या पीएचडी थीसिस का टॉपिक भी यही था। 2021 का जो चुनाव था वो 2021 एक चुनाव का वर्ष था, और इसी में मेरी ये पुस्तक रिलीज हुई थी। तो इसके माध्यम से मैं आम जनता से कनेक्ट होके चुनाव प्रक्रिया के सारे सुधार उनको बताना चाहती थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से वर्क करता है। तो लॉ को मैं कॉमन मैन से कनेक्ट करना चाहती थी और इलेक्शन इसका सबसे बेहतरीन माध्यम था। कहानी और उपन्यास लिखन भी मेरा बहुत पसंदीदा विषय है, और मुझे मेरा बहुत मन था कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तो इसे मैं अपनी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म के माध्यम से पूरा करूंगी।
0: Wonderful. ये तो बहुत ही आपने बड़ा चैलेंजिंग काम लिया और उसको पूरा भी किया। तो अच्छा बताइए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपकी पुस्तक को राष्ट्रीय स्तर पर काफी अप्रिसिएशन भी मिला है, तो ये कैसा लगा आपको, बहुत संतोष मिला? किस तरह से, आपने मीडिया में भी कवरेज किया होगा इसको, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी सर, बिल्कुल। मेरी जो पुस्तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया अ कंपैरेटिव स्टडी विद यूके एंड यूएस लीगल सिस्टम्स है, इसका विमोचन 15 जनवरी 2021 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा जी ने नई दिल्ली के निर्वाण सदन में किया था। और इसे ये जो बुक है सर, इसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया था इसकी लॉन्च को। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जो बुक लॉन्च है इसने मुझे एक नेशनल लेवल फेम दिलाया, और मेरे जो राइटिंग स्किल्स है, मेरा जो लेखनी का करियर है, उसके लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ। और मुझे इस एनकरेजमेंट के बाद लगा कि मैं और लिखूंगी और देश के नागरिकों से जुड़ूंगी, और ये वेलफेयर करने का मेरा खुद का माध्यम होगा।
0: That's wonderful. ये तो बहुत ही बड़ी, इतनी कम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आपने इतना बड़ा काम कर लिया। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आपकी इस जो आपको मीडिया में सराहना मिली, तो एक इसी खुशी में एक गाना सुन लेते हैं, एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर हम आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
1: श्योर सर।

0: तो वेलकम बैक डॉक्टर कोमल। अब आ रहे हैं हम कुछ आपकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, और आजकल हिंदुस्तान में भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ये टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो बुक है द काम आफ्टर द स्टॉर्म, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब आप बात आपकी इस पुस्तक के बारे में बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका नाम भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, द काम आफ्टर द स्टॉर्म, तो ये शीर्षक आपने कैसे, टाइटल कैसे दिया इसको, क्या क्या इसके पीछे भावना थी, क्या विचार था?
1: जनरली आपने एक सेइंग सुनी होगी कि तूफान से पहले की शांति के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन द काम आफ्टर द स्टॉर्म ये जो है ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और मेरी अपकमिंग नॉवल भी है। द काम आफ्टर द स्टॉर्म एक इंसान को खुद से जोड़ती है, और स्पेशली ये एक इंडियन मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमेन के बारे में है। ये जीवन एवं रिश्तों के बारे में और उनमें आने वाले तूफानों के बारे में बताती है, और उनसे उबरने और खुद को पहचानने तथा आगे बढ़ने की एक जर्नी है। इन अदर वर्ड्स द काम आफ्टर द स्टॉर्म इज अबाउट सेल्फ लव, बाउंड्रीज, लेटिंग गो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। और ये सारे जो लेसन्स हैं वो उस नॉवेल की मेन कैरेक्टर सिया, जो कि एक मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमन है, शी इज अ वर्किंग वुमन, उसकी जर्नी है और उसका रियलाइजेशन है अपने आप के साथ।
0: तो इसमें क्या प्रेम, विश्वासघात, आत्मसम्मान, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, तो आप क्या लग रहा है कि आज की जो हमारा मेट्रो सिटीज की लाइफ है वहाँ आदमी बहुत इमोशनली अकेला होता जा रहा है, खासतौर से विमन जब मैरिज के बाद में जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों में उनको जिंदगी बिल्कुल अलग तरह की मिलती है, तो क्या उस विषय को टच किया है आपने, किस तरह से किया है?
1: जी बिल्कुल, ये जो कहानी है ये आजकल की मैरिड वुमेन के बारे में है, और जिस तरह से हमारे देश में ये केसेस आ रहे हैं डाउरी रिलेटेड, और ये जो ब्राइड्स हैं शादी के कुछ ही सालों में उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है और सोसाइटी को वेकअप होने की जरूरत है। तो आजकल का जो समाज है उसमें गहरे प्रेम और लगाव पे आधारित जो रिश्ते हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। एक जमाना था जब लोग लव लेटर्स लिखा करते थे, प्रेम पत्र लिखते थे, अब आजकल एंड्रॉइड फोन्स का और सिचुएशनशिप्स का जमाना है जब हर दिन हर घंटे लोगों की फीलिंग्स बदलती हैं। तो आजकल प्रेम में करुणा, त्याग, किसी का वेट करना, ये सारी फीलिंग्स तो लुप्त हो गई हैं कम्प्लीटली। और आजकल अगर हम बात करें कि आजकल की यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं, तो आजकल की जो पीढ़ी है वो डेटिंग और मोमेंट्री प्लेजर्स के बारे में ज्यादा फोकस्ड हैं, और ऐसे में विवाह की जो संस्था है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कमिटमेंट्स हैं, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत से लोग विवाहित या कमिटेड होने के बावजूद भी इमोशनली बहुत अकेले हो गए हैं, और ऐसा माने कि रिश्तों में आधुनिकता की ठंडी सूखी बर्फ सी जम गई है।
0: बात तो बहुत गहरी कह रही हैं आप, और अब इसका इलाज जो है या इसके को किस तरह से ओवरकम किया जाए, महिलाएं अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचाने, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो ये किस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए, कुछ इस विषय को भी टच किया है क्या आपने?
1: जी हाँ बिल्कुल, महिलाएं या जो स्त्री है वो अन्नपूर्णा है, वो शक्ति स्वरूपा है, शी हैज टू रियलाइज हर ओन पावर। उसमें हर एक तूफान का सामना करने का सामर्थ्य है, उसमें धरती जैसी स्थिरता और चंद्रमा जैसी शीतलता है, और जीवन के बड़े से बड़े तूफानों को एक महिला शांति से परिवर्तित कर सकती है और अपने साहस से समाज में सुधार ला सकती है। लेकिन ये सिर्फ स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। कि हमें पता चले कि एक परिवार में और समाज में महिलाएं मेंटली और इमोशनली कैसा फील करती हैं, क्योंकि महिलाओं की मेंटल हेल्थ पे तो हमारा समाज फोकस ही नहीं कर रहा कि एक महिला कैसा फील करती है. ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं.
0: लेकिन ये भी बात है कि आजकल समाज में अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उसके बाद में समाज में या अपने पारिवारिक लोगों के बीच में भी खुलकर बातचीत करने से अभी भी लोग हिचकते हैं. ये जो दिक्कत आती है, जैसे अभी ये केस चल रहा है, उसमें भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने बिल्कुल अपने फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात शेयर नहीं की और बाद में इतना ऐसा बड़ा हादसा हो गया. इसका किस तरह से क्या किया जाए, क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: देखिए, आजकल समाज में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं. पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं. तो सबसे पहले तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में लीगली अवेयर होना बहुत जरूरी है. और किसी भी रिश्ते में, चाहे बेटी का उसके माँ बाप से हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, इनमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ताकि सबको एक दूसरे की भावनाओं के बारे में एक खुले तरीके से पता रहे. और इनके अलावा आजकल लॉयल्टी, सैक्रिफाइस जैसे मानवीय गुण रिश्तों में होना बहुत आवश्यक हो गया है.
0: सही बात है. तो चलिए, ये जो रिश्तों की जटिलता है या रिश्तों की आपाधापी है, इस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं. और हमारी फिल्मों में तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से कई गानों के थ्रू भी लाया गया है. तो ये गाना सुनते हैं और फिर आगे इसी विषय पे थोड़ी सी बातचीत और करते हैं.
1: जी बिल्कुल.

0: हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे रामायण से सिंबॉलिक पैरेलल्स लेने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या माइथोलॉजिकल करेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ में देखना पाठकों को एक अलग सा नजरिया देता है, पर्सपेक्टिव देता है? क्या क्या
1: जी
0: विचार है, आपने किस तरह से किया ये?
1: बिल्कुल आलोक जी, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अडॉप्ट किया है अपनी नॉवल में, अपकमिंग नॉवल में। और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करके मैं युवाओं को उनके प्रति सजग करना चाहती हूँ, ताकि हमारे युवा रामायण जैसी एपिक्स से जुड़ सकें। और इस तरह की लेखनी के लिए प्रसिद्ध लेखक अमिश हमेशा से मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यदि हम मॉडर्न इंडियन वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो भी आपको हर घर में एक सिया मिलेगी, केकई और मंथरा जैसे कैरेक्टर्स आपको हर परिवार में मिलेंगे। और असामाजिक और संस्कारहीन महिलाओं के रूप में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में एक सूर्पणखा आपको जगह जगह मिलेगी। और यदि हम एक हस्बैंड का रोल देखें, तो कलयुग में कोई भी पुरुष आपको कंप्लीटली राम के रूप में तो नहीं मिलेगा, उसमें रावण के दुर्गुण भी हो सकते हैं। तो जो कैरेक्टर है वो राम और रावण का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने माइथोलॉजी को मॉडर्न इंडियन कैरेक्टर्स के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया है, जिससे आम लोग माइथोलॉजी के साथ और हमारे एपिक्स और स्क्रिप्चर्स के साथ जुड़ सकें और उनसे रिलेट कर सकें।
0: दैट्स वंडरफुल डॉक्टर कोवल, मजा आ गया आपकी बात सुन के। आपका ये कहना कि आज के समाज में अगर हम देखें या परिवारों में देखें, तो आपको केकई भी मिल जाएगी, मंथरा भी मिल जाएगी,
1: जी
0: और सभी मिल जाएंगी, सुमित्रा भी मिल जाएगी, लेकिन और राम मिलना
1: सूर्पणखा सर,
0: मुश्किल है। सुपर कार भी मिल
1: जी
0: जाएगी, बिल्कुल
1: जी
0: ठीक है,
1: जी
0: बिल्कुल ठीक है। और राम जो है वो वास्तव में मुश्किल है, शायद लक्ष्मण
1: जी
0: जैसा भाई कभी कभार मिल जाए, लेकिन आजकल तो भाई कहाँ रहे।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: मजा आ गया, ये पैरेलल तो आपने बहुत बढ़िया बात सुन के आपकी बहुत अच्छा लगा कि किस
1: जी
0: तरह से आपने इसको आज की दुनिया से रिलेट किया है।
1: थैंक यू
0: और
1: सर।
0: बस जो सूखापन आ गया है हमारे रिश्तों में, और लेकिन कहीं भी देखिए, हमारी किसी भी पुरानी माइथोलॉजिकल उस पे चले जाइए, महाभारत भी आजकल घर घर में हो रही है और रामायण भी हर जगह है। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आपने इसका थॉट था इस बुक के पीछे, इस पे कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है जिससे आप इस पे इंस्पायर हुई हो और आपने ये किताब लिखी हो?
1: सर ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा, मेरे जो रीडर्स रहे हैं पहली बुक के, कि ये क्या ये आपकी लाइफ से प्रेरित है। तो मैंने उनसे कहा कि आई एम एन इंडियन वुमेन, मैं भारत की बेटी हूँ और सबसे पहले राजस्थान की बेटी हूँ। तो ये जो कहानी है, हो सकता है कि इसमें कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन ये हम सबकी कहानी है। ये अकेले मेरी कहानी नहीं है, ये उन सभी बेटियों की कहानी है जिनके मामले न्यूज में आ रहे हैं, जिन्होंने तरह तरह की प्रताड़नाएं झेली हैं। तो ये हर मॉडर्न इंडियन वुमेन की कहानी है, जो वर्किंग है, जो एक मैरिड इंडियन वुमेन है और जो चैलेंजेस फेस करती है अपनी लाइफ में, और फिर वो स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट करती है। तो ये एक जर्नी है, इट इज अ जर्नी ऑफ एवरी इंडियन वुमेन।
0: दैट्स वंडरफुल,
1: और
0: बहुत
1: बाकी मैं
0: बढ़िया।
1: चाहती हूँ कि जो मेरे रीडर्स हैं वो मेरे बारे में जाने, वो मेरी किताबों को पढ़ें तो मेरे बारे में भी पढ़ें, और फिर वो कनेक्ट कर पाएंगे कि बुक कहाँ तक रिलेटेड है, और मेरे बारे में भी जान पाएंगे। तो आई विल फील बेटर कनेक्टेड टू माय रीडर्स।
0: चलिए, तो हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस किताब के लिए। आई एम श्योर के आपकी लेखनी बहुत कंपैशनेट भी होगी, फियरलेस भी होगी। और चलिए, इस बात पे रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे आपकी जिंदगी के बारे में और बातचीत करते हैं।
1: जी।

0: वेलकम बैक कोमल जी। अब
1: जी
0: थोड़ा
1: सर,
0: सा मैं एक सेंसिटिव सब्जेक्ट की तरफ या आपके एक लाइफ के पार्ट की तरफ आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो, कि आपने अपने जीवन में विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी चुनौती भी फेस किए हैं और
1: जी
0: इतनी इसके बावजूद भी इतने अचीवमेंट्स आपके रहे, तो अगर बहुत ही एक सहजता से पूछूं तो आपको पहली बार कब ऐसा एहसास हुआ कि आपकी जो साइट है वो नॉर्मल लोगों से अलग है, और ये किस तरह से हुआ?
1: सर, ये मुझे बचपन से ही है और ये बहुत स्लाइट या माइल्ड फॉर्म में है, तो मैंने इसे हमेशा सामान्य जीवन का फॉर्म ही माना, पार्ट ही माना, और मैंने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कभी भी इसे कोई कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में एक्सेप्ट किया। और मुझे याद है कि जब मेरे पेरेंट्स मेरी थोड़ी चिंता करते थे, तब मैंने उन्हें हमेशा यही कहा कि आप पॉजिटिव साइड देखिए, आधा ग्लास तो भरा है, उसमें मैं आइस क्यूब्स डाल के उसे पूरा भर लूंगी। ये मैंने कहा था जब मैं छोटी बच्ची थी।
0: अरे वंडरफुल, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस तरह की चीजों से कई बार लोगों में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कई बार ये हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं भी बहुत पहले से कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे भी जब बाद में पता लगा तो लगा कि ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन बाद में लाइफ चलती रही इसी तरह से। बिल्कुल, आई एम श्योर।
1: हाँ सर, लाइफ विल ऑलवेज गो ऑन, और कभी भी किसी को भी अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी वीकनेस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड नेवर एवर गिव अप।
0: तो पेरेंट्स का किस तरह से, क्या मतलब जब उनको पता लगा तो हाउ डिड दे सपोर्ट यू, किस तरह से आपको वो हिम्मत दिलाते?
1: दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, एजुकेशन में बहुत सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के लिए गुजरात भेजा, और फिर हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए उन्होंने फ्लोरिडा भी भेजा, जिसमें इंटरकल्चरल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में मैंने बहुत अच्छी पोजीशन सिक्योर की। मैं मियामी के सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ में जाके और मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन फाइट करके आई। So it was a wonderful experience because I was up against actual American lawyers when I was a law student. So मेरी mobility को लेके, education को लेके, हर चीज को लेके parents ने बहुत support किया।
0: अच्छा, तो ये किस तरह का, क्या कोई आप scholarship पे गए थे या किस तरह से आप sponsor होके गए थे, कुछ बताइए उसके बारे में, कैसे गए थे?
1: सर, ये national level पे हमारी scrutiny हुई थी जब मैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में थी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मैंने मेरिटोरियसली परफॉर्म किया तब उन्होंने मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट किया, और तभी सारी फंडिंग और स्पॉन्सरशिप होने के बाद हमें सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ ने वहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के लिए सम्मिलित किया।
0: अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो आपने तो इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं लाइफ में, तो उन यंगस्टर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी या क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो फिजिकल लिमिटेशन, इमोशनल सेटबैक के कारण अपने आप को और अपने सपनों को से आगे बढ़ने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते?
1: जी हाँ आलोक जी, मैं हर यंगस्टर को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो किसी लिमिटेशन को एक सेटबैक ना समझें, और अपने आप को आप कंट्री के लिए और कॉमन पीपल के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं इस बारे में आप अपनी रणनीति बनाएं। और एक छोटी सी कहावत मैं यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूंगी, उन्हें प्रेरित करने के लिए, कि परिंदों ने उड़ान भरी है, परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है, जीती है अभी चंद वादियां, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। डोंट गिव अप।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए इसी अच्छी लाइंस पे हम रुक के गाना सुन लेते हैं, परिंदों की उड़ान और जीवन की उड़ान के भावों को लेता हुआ, और फिर आगे की बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ कोमल जी, अब आते हैं आपके एक और पसंदीदा विषय की तरफ, संगीत।
1: जी हाँ।
0: आपने जीवन में कानून, प्रशासन, साहित्य तीनों को साधा है, तो संगीत से आपका रिश्ता कब से है और कैसे ये शुरुआत हुई?
1: सर, संगीत से मेरा रिश्ता बहुत छोटी उम्र से है, क्योंकि मुझे एक हारमोनियम मिला था जो कि हमारी तीन चार पुश्तों ने मेरे ननिहाल साइड से, मेरे पर नाना जी ने भी, उस श्री तखत राज जी के मावत ने उसे यूज किया था, उस पे संगीत सीखा था। और उसके बाद 6 साल की उम्र से मैं ऐसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ, और उदयपुर में श्रीमती पामल भंडारी मोदी और श्री प्रेम भंडारी, ये दोनों मेरे गुरु रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया।
0: ओके, तो किस तरह का म्यूजिक खास पसंद है? पुराने फिल्मी गीत है, भजन है, सूफी है, गजल, या कुछ और आपको क्या किस तरह का पसंद है?
1: आलोक जी, मुझे भजन गायन का विशेष शौक है। अच्छा। और इसके अलावा, जी हाँ बिल्कुल, और स्पेशली ठाकुर जी के भजन, श्री कृष्ण के भजन गाने का मुझे बहुत ही शौक है। और इसके अलावा गजल्स हैं, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स हैं, ये भी मुझे काफी पसंद है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड और मेंटल काम भी देते हैं।
0: तो कोई ऐसा गीत आपको बताइए जो अपने आपके लाइफ के चैलेंजेस को और होप को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता हो, ऐसा कोई गीत आपके दिमाग में है, जहन में है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, एक गीत है जो डोर फिल्म का है, और ये मैंने हमेशा इसको गुनगुनाया जब भी मैंने किसी चुनौती को फेस किया। तो क्या मैं उसके बोल बताऊं या गाकर सुनाऊं, आप बताइए।
0: अगर गाकर सुनाए तो नथिंग बेटर देन दैट,
1: जी
0: सुनाने तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: उसके बोल
0: और हाँ,
1: ये हौसला कैसे झुके, ये आरजू कैसे रुके।
0: ओके, बहुत अच्छा है
1: ये।

0: वंडरफुल। मैं तो आपसे ये सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा और सुनाएंगी। खैर, इसके अलावा आप और कोई गीत अगर हमारे को गजल या भजन सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। हम तो मजा आ गया आपका इतने सी दो लाइनें सुन के। सुनाइए आप,
1: जी
0: अगर
1: थैंक
0: कोई
1: यू
0: आपको पसंद हो, कोई भी एनी
1: जी
0: एनीथिंग जो आप सुनाना चाहें तो हमें सुनाइए।
1: जी हाँ मैं ठाकुर जी का एक भजन सुनाऊंगी। मेरा

0: करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
1: बस इतना ही, और भी सुनाना चाहेंगी?
0: चलिए हम भी थोड़े करके लास्ट में मैं आपको कुछ और पंक्तियां सुना सकती हूँ। चलिए
1: हम भी थोड़ा ग्रीडी होते जा रहे हैं। बिल्कुल
0: जी। इट्स माय प्लेजर सर। एक और है भजन जिसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, तो जैसे ही आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले आई विल गो विद अनदर भजन।
1: नहीं नहीं, अब ऑलमोस्ट हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अब एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, और टाइम इतनी जल्दी गया आपके साथ बात करने में कि मुझे पता ही नहीं लगा कि हम इतना टाइम निकल चुका है हमारा
0: जी,
1: है ना। तो चलिए यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर अपन इसको लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं।
0: बिल्कुल सर।

0: हेलो, वेलकम बैक कोमल जी। अब आप ये बताइए कि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो क्या हैं? क्या किसी नई पुस्तक या नए विषय पर आप काम कर रही हैं? क्या सोच रही हैं, आगे किस तरह से देखती हैं इसको?
1: जी सर, मैं अभी अपनी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर दिस स्टॉर्म के कंप्लीशन और एडिटिंग पर वर्क कर रही हूँ। और ये पुस्तक मेरे बहुत ही करीब है, क्योंकि मैं इस पुस्तक से समाज में बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं इसमें जो महिलाओं के प्रति समाज का फर्ज है और दृष्टिकोण है वो बदलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मॉडर्न इंडियन वुमेन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करें, तब भी वो खुद को ना भूलें। दे मस्ट चूज देमसेल्व ओवर एंड ओवर अगेन एंड ईच एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं हो कि वो महिला जो एक शादी के संस्था में एंटर करती है वो धीरे धीरे खुद को उसमें खो दे। वो अपने आप से कनेक्टेड रहे और सेल्फ लव और सेल्फ रियलाइजेशन तथा अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करे और ग्रो करे।
0: आई नो, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है समाज में, या तो महिलाएं शादी नहीं करना चाह रही हैं, और
1: जी
0: शादी
1: हाँ
0: करना चाह रही हैं तो मैरिड लाइफ में किसी तरह से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। जिनकी शादियां हो जाती हैं वो चाहती है कि हमारे बच्चे नहीं हो। तो आजकल तो जहां भी समाज में देखते हैं, खास तौर से बेंगलोर, मुंबई, इस तरह के बड़े शहरों में जो लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से होती जा रही है, और अंदर फैमिली में क्या चल रहा है ये बात कहीं बाहर ही नहीं आ सकती है। तो
1: जी
0: क्या
1: हाँ
0: सोचती है, किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए? महिलाएं ही उनको अपनी आवाज को आगे बुलंद करना पड़ेगा, और क्या क्या विचार सोचती हैं आप इसके?
1: सर, इसके बारे में एक तो ये विचार है कि पूरे परिवार को ये समझना चाहिए कि वो महिला क्या फील करती है। एक महिला जब अपने पियर पक्ष से ससुराल जाती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहां पे सबको खुश रखे, लेकिन क्या उन सबसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस एक महिला को खुश रखे जो अपना सब कुछ छोड़ के आती है? और अगर वो विवाह नहीं करना चाहती तो इट शुड बी हर चॉइस। अभी लेटेस्ट बहुत सारे सर्वेज आए हैं जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक 45% महिलाएं विवाह की संस्था में एंटर नहीं करेंगी। तो ये फैसला क्यों हुआ? ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे समाज ने महिलाओं का किया है उसकी वजह से महिलाएं लिबरेट हुई हैं, या उन्होंने ये ओपन एटीट्यूड अडॉप्ट किया है? तो अगर वो नहीं करना चाहती विवाह, तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ये नहीं होना चाहिए समाज को कि वो हर महिला को मेंटली प्रेशराइज करे कि वो विवाह में एंटर करे। बहुत सारी चीजें हैं जो वो बिना विवाह के भी कर सकती है, जैसे कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अकेडमिक ग्रोथ, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो हर महिला को विवाह की संस्था में झोंक देना एक बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। सोसाइटी उनको अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करे अगर वो अपने करियर या किसी और चीज पे फोकस करना चाहती हैं। और रही बात बच्चे और परिवार आगे बढ़ाने की, तो इस बारे में भी सर मेरा ये मानना है कि हैविंग अ चाइल्ड शुड बी अ वुमेन्स चॉइस बिकॉज इट इज हर बॉडी, इट शुड बी हर चॉइस। जनसंख्या ऑलरेडी करोड़ों पार कर चुकी है, तो अगर कुछ लोग चूज करते हैं कि वी डू नॉट वॉन्ट अ चाइल्ड, इट शुड बी अ मैटर ऑफ देयर चॉइस बिकॉज इट इज अबाउट अ वुमेन्स हेल्थ। सो मेरे आइडियाज कुछ फेमिनिस्ट हैं, और कई बार मुझे लोगों से इस बारे में थोड़ा सा ये फेस करना पड़ता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं महिलाओं के पक्ष में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। क्योंकि लड़कियां, आपने जैसा न्यूज में देखा होगा कि लड़कियों की डेथ हो रही है, लड़कियां प्रेशर में हैं, और समाज अभी तक इस बारे में हमारा समाज जवाब नहीं दे पाया है। तो समाज को जवाब देना होगा कि 2026 है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, देश और दुनिया, तो फिर हमारी बेटियों के साथ ऐसे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें?
0: बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बहुत सारी बातें कह दी, और बहुत ही एक गंभीर बातें हैं। और आज के समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उसको जब तक ताकत नहीं मिलेगी और उनकी जिंदगी की मालिक वो खुद हैं, जब तक ये फीलिंग
1: जी
0: हमारे,
1: मैम
0: हम लोग भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे ओन देयर
1: जी
0: बॉडी एंड दे ओन देयर माइंड बोथ, तो ये जब तक उनमें खास बात नहीं आएगी तब तक बहुत बहुत मुश्किल होगा। चलिए कोमल जी, तो फिर अब आखिरी पायदान पे हम आपसे यही पूछते हैं कि ऐसे लोग जो एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप कोई खास संदेश देना चाहें या कोई गाना उनको सुनाना चाहें, एनीथिंग जो आपको पसंद हो वो आप मोस्ट वेलकम।
1: जी हाँ, जब भी जीवन में कोई तूफान आता है वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, वो हमें एक बदलाव लाने के लिए आता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़े चैलेंज या तूफान या स्टॉर्म से गुजर रहे हैं तो मेरा मैसेज आपको यही है कि पिक अप द पीसेस एंड मूव ऑन, डू नॉट स्टैगनेट, आप वहीं पे फंसे ना रह जाइए, मूव ऑन करिए, कभी हार ना माने और उस स्टॉर्म को या उस तूफान को एक लेसन की तरह उससे सीखें और उसके बाद काम या स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग अ फ्यू लाइन्स दैट बी पेशेंट इन द स्टॉर्म एंड फोकस ऑन द सनशाइन आफ्टर, क्योंकि उस तूफान के बाद जरूर रोशनी आएगी, जरूर पॉजिटिविटी आएगी। धन्यवाद,
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कोमल जैन जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं बल्कि संवेदनाओं, साहस, आत्मविश्वास और इनर हीलिंग की एक खूबसूरत यात्रा रही। आपने जिस ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ रिश्तों, आत्मसम्मान, संघर्ष, फॉरगिवनेस और जीवन की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए, वह निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के दिलों को छुएगा। आपकी कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इंसान के भीतर विश्वास, धैर्य और आगे बढ़ने का साहस हो तो हर तूफान के बाद एक शांत और सुंदर सुबह जरूर आती है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड ओपिनियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इसको सुने, अपने लीगल राइट्स के प्रति अवेयर हों और अपने आप से एक रिश्ता कायम करें।
0: तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म पाठकों के दिल तक पहुंचे और उन्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं रेडियो SN। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत और एक नई बातचीत के साथ। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

0: सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।
1: मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से।

माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको

0: झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूँ पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
0: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए, हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन

0: जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

चांचुराने आए चमचा चलम चकोर चरैया चूचू चूचर राय भैया चूचू का मुरब्बा भैया चूचू का मुरब्बा टकला टकलू टाक तवोरी तकिया

सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: कुछ तो सुना करो, कुछ तो कहा करो, कुछ तो सुना करो, कुछ तो कहा करो, पीने के बाद होश में साकी रहा करो। यूं ही नहीं मयसर होती ये नेमतें, यूं ही नहीं मयसर होती ये नेमतें, थोड़ा तकल्लुफ आप भी साकी किया करो। नजरों से पिला रहे हो भर भर के जाम तुम, नजरों से पिला रहे हो भर भर के जाम तुम, ऐ दिलरुबा इस चश्क में खुद भी बहा करो। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में आज एक बेहद खास और बाकमाल शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अंबाला के एक छोटे से गांव अधोमाजरा की मिट्टी में पले बड़े 30 सालों तक भारतीय सेना में देश की खिदमत करने वाले रिटायर्ड सूबेदार और एक बेहद संवेदनशील शायर और गीतकार लाभ सिंह जी। लाभ जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका, आदाब, आइए।
2: जी नमस्कार जी। जी नमस्कार आरती जी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने आपके SN रेडियो के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने मनोभावों और लेखन के एहसासों को प्रकट करने का मौका दिया।
1: बहुत बहुत खुशामदेद आपकी लाभ जी। आप बताइए हमारे दोस्तों को कि अंबाला के छोटे से गांव अधोमाजरा में एक किसान परिवार से शुरू हुआ आपका ये सफर वाकई बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक है। हमारे दोस्तों को अपने बचपन, गांव की मिट्टी और अपनी शुरुआती पढ़ाई की उन खास यादों के बारे में बताइए जरा।
2: जी, मेरा गांव अधोमाजरा है परंतु अब मैं अंबाला शहर में रहता हूँ।
1: जी,
2: आपने अपने बचपन की यादों की बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि जमाना गुजर गया है, आज से 50 वर्ष पहले की बातें हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: मेरा बचपन बड़ा ही साधारण था, बड़ा परिवार, सीमित संसाधन, गांव की खुली हवा, खुले आंगन, कच्ची गलियां और बेफिक्र जिंदगी।
1: जी,
2: मिट्टी से लगाव की बात करें तो मिट्टी से लगाव होना स्वाभाविक है। आज भी मैं जब गांव में जाता हूं तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य उभरने लगते हैं जहां हम पेड़ों के नीचे खेला करते थे।
1: वाह।
2: खुले आंगनों में लुका छिपी के खेल खेला करते थे। खेलते समय जब कभी चोट लग जाती थी तो कई कई दिनों तक घर वालों को पता ही नहीं चलता था।
1: जी,
2: परंतु वह सब अब नहीं रहे। पेड़ कट चुके हैं, खुले आंगन दीवारों ने घेर लिए हैं और उन पर बड़े बड़े मकान खड़े हो गए हैं। आज सब कुछ बदल चुका है, बस ये सब यादों में ही रह गया है।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: मैंने बीए तक की पढ़ाई की है शुरुआती दौर की बात करूं तो वह दुनिया कुछ अलग लगती है आज के दौर से। हमारे समय में तो बस स्कूल में एक ही अध्यापक हुआ करते थे पांचवी कक्षा तक
1: जी,
2: और हमारा काम होता था स्कूल जाना आना, खेलने चला जाना, शाम को खेल कर आना, खाना खाकर सो जाना
1: जी,
2: और सुबह उठकर तैयार होकर फिर स्कूल चले जाना।
1: बिल्कुल,
2: होमवर्क जैसा कोई झंझट था ही नहीं, जो काम मिलता था वह सब स्कूल में पूरा कर लिया करते थे, बाकी मस्ती होती। जबकि आजकल तो बच्चे LKG UKG से ही ट्यूशनों और टेंशनों से घिर जाते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो ये बताइए कि अब आप हमें अपनी शायरी सुनाइए। अब
2: जी, इकरार की इच्छा होती है, इनकार की इच्छा होती है। इकरार की इच्छा होती है, इनकार की इच्छा होती है, बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है। बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है।
1: बात खूब।
2: हमको भी था विश्वास कभी जीवन भर साथ निभाएंगे, किसने सोचा था एक दिन दो नदिया के तट बन जाएंगे। तू कहाँ और मैं कहाँ खड़ा,
1: वाह,
2: तू कहाँ और मैं कहाँ खड़ा, मझधार की इच्छा होती है, बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है। बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है।
1: वाह वाह, लाके सुभान अल्लाह, बेफिक्र बचपन की यादों से लेकर आपकी इस कविता, इकरार की इच्छा होती है, इनकार की इच्छा होती है में दिल की कशिश और तड़प कितनी खूबसूरती से झलक रही है। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो लाप जी, अब आप ये बताइए कि 1988 में आप फौज में शामिल हुए, जैसा कि आपने बताया, और 30 साल देश की आपने खिदमत की। इतने कड़े अनुशासन के बीच आपके भीतर के शायर ने इन हसीन जज्बातों को कैसे सहेजा?
2: जी, अनुशासन भारतीय सेना में सर्वोपरि है
1: जी।
2: यह जिंदगी को सही दिशा देने में मदद करता है। मैं आज भी अपनी दिनचर्या में अनुशासित हूँ। जल्दी उठना, फ्रेश होकर घूमने चले जाना, आकर अपनी दिनचर्या में मगन हो जाना
1: जी,
2: आज भी वैसा ही है। सेना में सेवा के दौरान बहुत जगह घूमने का मौका मिला और अलग अलग समय में ड्यूटी करने का मौका मिला
1: जी।
2: उस दौरान हर समय मेरी जेब में पेन और पेपर होता था। रात के एकांत समय में अपनी कविताएं और गीत गुनगुनाया करता था।
1: अच्छा।
2: और कोई नया विचार आता था तो उसको लिख लिया करती
1: जी।
2: यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा और आज भी वैसे ही चल रहा है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर सुनाइए वो सिलसिले से अब कौन सी कविता सुनाएंगे आप?
2: जी, अटक रही हैं आज किसी के इंतजार में ये सांसें, अटक रही हैं आज किसी के इंतजार में ये सांसें, एक रात की मोहलत दे दो, जी भर कर कर लूं बातें, जी भर कर कर लूं बातें।
1: बहुत खूब।
2: नहीं चाहिए मुझको दौलत, ना ही तख्त ओ ताज मुझे, नहीं चाहिए मुझको दौलत, ना ही तख्त ओ ताज मुझे, आज बिछड़ जाने से पहले मिलवा दो हमराज मुझे। नहीं चाहिए हीरे मोती, नहीं चाहिए हीरे मोती, रतन मणि की सौ बातें, एक रात की मोहलत दे दो, जी भर कर कर लूं बातें, जी भर कर कर लूं बातें। अटक रही हैं आज किसी के इंतजार में ये सांसें एक रात रहते दो, जी भर कर कर लूं बातें, जी भर कर कर लूं बातें।
1: वाह, भर्ती के नीचे छुपा हुआ एक संवेदनशील शायर और रात के सन्नाटे में लिखी अटक रही है आज किसी की इंतजार में ये सांसें एक रात की मोहलत दे दो, जी भर कर कर लूं बातें। वाह, इतनी पुरअसर नज़्म दिल को छू गई लाभ जी। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं लाभ जी की पहली पसंदीदा गजल। तो ये कौन सी गजल है? ये है भूपेंद्र सिंह जी की सुरीली आवाज में इस प्रोग्राम में लाभ सिंह जी की पहली पसंदीदा गजल, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। आइए दोस्तों।

0: भूपेंद्र सिंह की इतनी खूबसूरत गजल सुनने के बाद लाभ जी, अब हमें आप ये बताइए कि आपने AFMC पुणे से पढ़ाई की और आर्मी डेंटल कोर में भी काम किया। मेडिकल साइंस की इस दुनिया में रहते हुए शायरी की ये तन्हाई आपके करीब कैसे आ गई?
1: जी, मैंने AFMC पुणे से डेंटल टेक्नीशियन की पढ़ाई की और 30 साल तक आर्मी डेंटल कोर में सेवाएं दी। सेना दंत चिकित्सा कोर बहुत ही कुशल प्रोफेशनल की कोर है
0: जी।
1: रही बात तन्हाई की, तो मैं ही तन्हाई के करीब चला गया, तन्हाई मेरे करीब नहीं जी।
0: बहुत खूब।
1: जैसा कि आप जानते हैं, सेना में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग एक साथ रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सबके शौक अलग अलग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कोई मदिरा, कोई ताश खेलना, कोई फिल्म देखना, कोई एकांत में पढ़ाई करना, कोई अपने करीबियों से बातचीत करना, पत्र लिखना आदि। तो ऐसे में मैंने भी एकांत को चुना।
0: वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मतलब ये सारी चीजों में से मदिरा, ताश, फिल्म और एकांत में पढ़ाई करना, इसमें से आपने एकांत यानी तन्हाई को चुना। बहुत खूबसूरत। तो फिर सुनाइए इस तन्हाई को बयां करती अपनी कोई चुनिंदा शायरी हमको।
1: जी, मुझे तन्हाई में छोड़ो, मुझे तन्हाई में छोड़ो, मैं सोना चाहता हूँ, किसी की याद में जी भर कर रोना चाहता हूँ।
0: वाह।
1: वो मेरे हो ना सके पल भर के लिए, वो मेरे हो ना सके पल भर के लिए, मैं नाउम्र उनका होना चाहता हूँ, ना वो मुमताज हैं ना शाहजहां किरदार मेरा।
0: वाह।
1: ना वो मुमताज हैं ना शाहजहां किरदार मेरा, ताज के ख्वाब में फिर भी संजोना चाहता हूँ।
0: वाह, बहुत खूब।
1: सभी इल्जाम मुझ पर आए और वो बच निकले, सभी इल्जाम मुझ पर आए और वो बच निकले, उन्हीं इल्जामों की लड़ियां पिरोना चाहता हूँ, किसी की याद में जी भर के रोना चाहता हूँ, किसी की याद में जी भर कर रोना चाहता हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत उम्दा शायरी। तन्हाई मेरे करीब नहीं आई, मैं तन्हाई के करीब चला गया। क्या गहरा और फलसफाना ख्याल है आपका लाभ जी, और आपकी ये शायरी तन्हाई के रंग को और गहरा कर देती है। ना वो मुमताज है ना शाहजहां किरदार मेरा, ताज के ख्वाब मैं फिर भी संजोना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत उम्दा। तो लाभ जी, अब हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि 2018 में, जैसा कि आपने बताया, सूबेदार के ओहदे से आप रिटायर होने के बाद भी आपने 8 साल ECHS में काम किया। इतने लंबे और इतने व्यस्त सफर के बाद भी आपके लिखने का जज्बा वैसा ही ताजा है, इसका राज क्या है?
1: जी, मैंने सेना से रिटायर होने के बाद ECHS अंबाला में 8 साल तक काम किया।
0: वाह।
1: मेरे काम की व्यस्तता मेरे लिखने में कभी बाधा नहीं लगी।
0: जी,
1: लिखना मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरी दिन भर की थकान कम हो जाती है। वैसे तो मुझे कोई व्यसन नहीं है, जबकि यह भी किसी व्यसन से कम नहीं।
0: वेरी नाइस।
1: इसमें मेरी पत्नी हेमा शर्मा एवं परिवार का पूर्ण सहयोग है
0: जी।
1: वे मेरे एकांत में कभी भी खलल नहीं डालते, आज भी वैसे ही चल रहा है।
0: बहुत खूब। तो आपकी ये बात बड़ी मजेदार है कि वैसे तो मुझे कोई व्यसन नहीं है, यानी कोई व्यसन मतलब कोई आदत या कोई
1: लत।
0: हाँ जी,
1: कोई बुरी आदत नहीं।
0: हाँ, वैसे तो मुझे कोई व्यसन नहीं है, परंतु ये भी किसी व्यसन से कम नहीं है। कोई बुराई नहीं है, ये भी किसी बुराई से कम नहीं। ओके, तो इससे मिलती जुलती आप हमें कौन सी कविता सुनाएंगे आप?
1: जी, बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने
0: जी,
1: बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने, बेशक तेरे शहर में पूर्ण शराब बंदी है
0: जी,
1: बेशक तेरे शहर में पूर्ण शराब बंदी है, जज्बा देख जरा के पीना नहीं छोड़ा मैंने बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने।
0: वेरी नाइस, बहुत खूब।
1: हर चौखट पर दुआएं मांगी हैं तुझसे रूबरू हुजी की साकी
0: जी,
1: हर चौखट पर दुआएं मांगी हैं तुझसे रूबरू होने की साकी, काशी मथुरा मक्का मदीना नहीं छोड़ा मैंने, बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने।
0: वाह,
1: बेशक तेरे शहर में पूर्ण शराब बंदी है, जज्बा देख मेरा के पीना नहीं छोड़ा मैंने, जज्बा देख मेरा के पीना नहीं छोड़ा मैंने।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लिखने की इस दीवानगी और परिवार के खूबसूरत साथ ने आपके जज्बे को हमेशा जवान रखा है। कितना खूबसूरत लिखा है आपने, काशी मथुरा मक्का मदीना नहीं छोड़ा मैंने, हर चौखट पर दुआएं मांगी तुझसे रूबरू होने की साकी, मगर काशी मथुरा मक्का मदीना नहीं छोड़ा मैंने। बहुत खूब, क्या कमाल का शेर लिखा है। तो चलिए दोस्तों, अब लाभ सिंह जी की पसंद की दूसरी खूबसूरत गजल सुनते हैं, और जरा गजल के बोल तो देखिए क्या गजल है ये, कि ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। क्या बात है लाभ सिंह जी, बहुत खूबसूरत गजल चुनी है आपने अपनी शायरी के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हुई। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये गजल।

0: पंकज उदास जी का ये सुरीला नगमा वाकई रूह को सुकून देता है दोस्तों। अच्छा राज जी, अब आप हमें ये बताइए कि आप हिंदी और उर्दू गजलों के साथ साथ पंजाबी लोकगीत भी बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। जब दिल की बात कागज पर उतरती है तो कौन सा रंग सबसे गहरा होता है?
1: जी, मैं हिंदी गीत, कविताएं, देशभक्ति के गीत, गजलें, पंजाबी लोकगीत लिखता हूँ, परंतु मुझे दर्द, जुदाई, विरह और देशभक्ति लिखने में बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: मेरी कविताओं में, गीतों में, गजलों में विरह का रंग छाया रहता है।
0: जी,
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि हकीकत में मेरा इस प्रकार के किसी भी दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है।
0: बहुत खूब,
1: बस लगता है कि मैं किसी की पीड़ा कम कर रहा हूँ इसे लिखकर, इसलिए मुझे बहुत आनंद आता है।
0: वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है, आप किसी की पीड़ा कम हो जाए इसलिए उस पीड़ा का बयां करते हैं, असल में जिंदगी में आपको कोई पीड़ा नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आप अपनी कौन सी शायरी हमारे दोस्तों को सुनाना पसंद करेंगे?
1: जी, वो रात रात ना रही, वो बात बात ना रही, वो रात रात ना रही, वो बात बात ना रही, अब मुझ में भी ना रहा जब आप ना रही। महबूब तेरे हुस्न के जलवे बड़े हसीन हैं, महबूब तेरे हुस्न के जलवे बड़े हसीन हैं, अब लुट गया सब कुछ मेरा, कोई बात खास ना रही। हमने जलाई होलियां अरमानों की अपने यहाँ, हमने जलाई होलियां अरमानों की अपने यहाँ, जलकर हुई की खाक जो, वो खाक पास ना रही। आंधियों ने वक्त की वजूद खत्म कर दिया, आंधियों ने वक्त की वजूद खत्म कर दिया, जिल्लत मिली नींद के मेरी लाश लाश ना रही, अब मुझ में भी मैं ना रहा जो आप ना रही, अब मुझ में भी मैं ना रहा जो आप ना रही।
0: क्या ही बात है, आंधियों ने वक्त की वक्त का वजूद खत्म कर दिया, जिल्लत मिली इतनी कि मेरी लाश लाश ना रही, अब मुझ में मैं भी ना रहा जो आप ना रहे। खुद बेदर्द होकर भी दूसरों के दर्द को अपनी शायरी में ढालना, ये एक बहुत संवेदनशील दिल ही ऐसा कर सकता है। आपकी ये नज़्म वो रात रात ना रही दिल के तारों को छेड़ जाती है, छू जाती है। तो इसके साथ ही लाप जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपको, आपने बताया था मुझे कि आपको अपनी छत पर गार्डनिंग यानी बागवानी का भी बहुत शौक है, पेड़ पौधों और फूलों की सोहबत में वक्त गुजारते हुए शायरी के कौन से नए पहलू सामने आते हैं आपके?
1: जी, आज के दौर में गार्डनिंग के लिए शहरों में जगह ही कहाँ बची है।
0: बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल ठीक है।
1: मैं गांव से आकर शहर में बस गया, शहर में तो अगल बगल सब मकान हैं।
0: बिल्कुल,
1: छत के सिवाय कोई जगह नहीं है,
0: वो भी कभी मयस्सर नहीं होती कभी कभी तो वो भी मयस्सर नहीं होती।
1: अगर गार्डनिंग करनी है तो वही एक जगह मिलती है। जब मैं गार्डनिंग कर रहा होता हूँ तो सोचता हूँ कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ कितना अन्याय कर रहा है।
0: जी,
1: जंगल काटे जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और एक खुले में रहने वाला इंसान, बड़े बड़े खेतों खलिहानों में रहने वाला, आज चंद गमलों में लगे चंद पौधों में वह सब कुछ ढूंढ रहा है जो वह गांव में छोड़कर आया था।
0: वाह,
1: होता है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं।
0: वाकई बहुत, आपका, आपके जवाब में कितना दर्द है। तो सुनाइए फिर, इसी दर्द में आपने क्या लिखा है?
1: एक ही शौक पाला है तेरे दीदार का मैंने
0: जी,
1: एक ही शौक पाला है तेरे दीदार का मैंने, वरना जमाने में हसीनाओं की कमी तो नहीं। तेरे जलवों में मैंने कश्मकश को देखा है,
0: वाह,
1: तेरे जलवों में मैंने कश्मकश को देखा है, तू खुश भी है

0: या कोई गनी तो नहीं।
1: वाह,
0: जिसे हर रात अब भी ख्वाबों में तराशते हो तुम, जिसे हर रात अब भी ख्वाबों में तराशते हो तुम, पूछो धड़कनों से अपनी वो शख्स हमी तो नहीं। तेरे जहन में चलती है न जाने कितनी साक्षी, तेरे जहन में चलती है न जाने कितनी साजिशें, भरोसा हो कैसे कि तू वही है या कोई बनी तो नहीं। तेरी यादों ने लाप मुझको जकड़ रखा है।
1: वाह,
0: तेरी यादों ने लाप मुझको जकड़ रखा है, सभी को शक है मैं जिंदा भी हूँ या मम्मी तो नहीं। जमाने भर में हसीनाओं की कमी तो नहीं, जमाने भर में हसीनाओं की कमी तो नहीं।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जिसे हर रात अब भी ख्वाबों में तराशते हो तुम, पूछो धड़कनों से अपनी वो शख्स हमी तो नहीं। और फिर तेरे जहन में चलती है न जाने कितनी साजिशें, भरोसा हो कैसे कि तू वही है या कोई डमी तो नहीं। बहुत खूब लाभ की प्रकृति के प्रति आपकी ये फिक्र और गमलों में अपने गांव को ढूंढने की कसक वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। और आपकी कविता एक ही शौक वाला है तो मिजाज ही बदल देती है। बहुत खूब। तो दोस्तों आइए अब इसके बाद हम सुनते हैं उस्ताद गुलाम अली साहब की सुरीली गायकी में लाप सिंह जी की पसंद पर प्रोग्राम की ये तीसरी गजल। और इस गजल के बोल हैं, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। गुलाम अली साहब की आवाज में आपकी नजर।

0: दोस्तों, हम सब ने लाभ सिंह जी की पसंद की गुलाम अली साहब की ये सदाबहार गजल सुनी। लाभ जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपकी बेटियां आज अपनी शिक्षा और करियर में बहुत ऊंचे मकाम पर हैं। एक पिता और एक संवेदनशील लेखक के रूप में आप इस सफर को कैसे देखते हैं?
1: जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: बड़ी बेटी ने BDS आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद से किया है और MHRM IIT खड़गपुर से किया है।
0: अरे वाह।
1: छोटी बेटी ने BA LLB पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और LLM MIT यूनिवर्सिटी मोहाली से किया है।
0: बहुत खूब।
1: मुझे उन पर गर्व होता है। मैंने कभी बेटा बेटी में अंतर नहीं समझा।
0: बहुत खूब।
1: बेटियां हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना पूरा हो रहा है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपकी इतनी काबिल बेटियां हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आपने लगता है उनकी परवरिश दिलो जान से की है। बहुत खूब। तो लाल सिंह जी, अब हमें बस सुनाइए अपनी एक और अच्छी सी कविता।
1: जी, खुशियां भूल गई घर मेरा। खुशियां भूल गई घर मेरा, गम भी अब कतराते हैं। आहट तक ना होती है अब जब वो आते जाते हैं, जब वो आते जाते हैं।
0: बहुत खूब।
1: एक झलक पाने को जिनकी चांद किया करता सजदे। एक झलक पाने को जिनकी चांद किया करता सजदे। अब चेहरा तो बात दूर की वो भी पीठ दिखाते हैं। आहट तक ना होती है अब जब वो आते जाते हैं, जब वो आते जाते हैं।
0: बात खूब।
1: फूल कली भंवरे बगिया में थे सब साथ बहारों में। फूल कली भंवरे बगिया में थे सब साथ बहारों में। अब तो कांटे भी मुझको अपनाने में शर्माते हैं। आहट तक ना होती है अब जब वो आते जाते हैं, जब वो आते जाते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आहट नहीं होती तो क्या उन्होंने अपने जूते का डिजाइन बदल लिया है? सही लगता है।
1: फर्क ही नहीं पड़ता आपके।
0: मतलब वो उन्होंने अपने जूते का स्टाइल बदल लिया है। पहले बहुत आवाज होती थी, अब पता ही नहीं चलता। समहाउ बेटियों की सफलता पर एक पिता का ये फख्र देखना वाकई दिल को छू लेता है। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि इससे ज्यादा सुंदर मिसाल और क्या हो सकती है कि लोग सिर्फ नारेबाजी नहीं करते, असल में अपनी जिंदगी में भी उसको ढालते हैं उस बात को। तो बहुत खूबसूरत लाती। अब आप हमें ये बताइए लाती कि आप अपने पुराने दर्द भरे गानों और गजलों के गहरे शौकीन हैं, ठीक है? एक सैनिक, जिम्मेदार पिता और माली और शायर के रूप में आपने इस पूरे सफर को देखने के बाद आज हमारे सुनने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: जी, मुझे दर्द भरे गाने और गजलें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी रूह को सुकून देती हैं ये।
0: जी,
1: मैं एकांत में इन्हें सुनना पसंद करता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: रही बात पैगाम की, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की हर चीज आपको कोई ना कोई पैगाम जरूर देना चाहती है।
0: जी,
1: यह निर्भर करता है कि लेने वाला क्या लेना चाहता है। जो आपका यह प्रोग्राम सुन रहे हैं वो तो बहुत ही शांति प्रिय और संजीदा किस्म के लोग होंगे।
0: बिल्कुल, 100%।
1: मैं उनको क्या पैगाम दे सकता हूँ? फिर भी मैं आपके सुनने वालों को आपके प्रोग्राम के माध्यम से दरखास्त करना चाहूंगा कि अपने देश, समाज और परिवार के प्रति जिम्मेवारी समझें। प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम भाव रखें। बेटियों को बोझ ना समझें। नशे से दूर रहें,
0: बिल्कुल
1: भाईचारा एवं सद्भाव बनाए रखें।
0: वाह, कितने दोस्तों देखा आपने, कितने पाकीजा ख्याल हैं, कितने उम्दा ख्याल हैं लाभ सिंह जी के। तो अब जाते जाते प्रोग्राम की आखिरी कविता भी सुनाइए हमें लाभ सिंह जी।
1: जी, पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। मेरे बस से कुछ ना था, हालात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। चांद चांद करता था ये जब चांद मंगाया था हमने। चांद चांद करता था ये जब चांद मंगाया था हमने। लेकर आई चांद सबे बारात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। इश्क मोहब्बत दुनिया की अनमोल नेमतों में से है।
0: बिल्कुल,
1: इश्क मोहब्बत दुनिया की अनमोल नेमतों में से है। मैं कर बैठा इश्क मेरी सौगात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया।
0: कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप कहते हैं चांद चांद करता था ये जब चांद मंगाया था हमने। लेकर आई चांद शबे बारात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। दिल ही तो है ना लाभ जी, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो लाभ जी, समाज के लिए आपने इतना खूबसूरत पैगाम दिया और अपनी अनमोल रचनाएं हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका दिल से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे दोस्तों को?
1: जी, इस रेडियो प्रोग्राम में बुलाने और मेरे एहसासों को शेयर करने के लिए रेडियो एसएम एंड रेडियो तांता भील और आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अलविदा।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत नमस्कार। और हमें भी आपसे बात करके और आपकी इतनी प्यारी शायरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया प्रोग्राम में आने के लिए और समाज के लिए इतना खूबसूरत आपने पैगाम दिया और इतनी अच्छी आपने साझा की हमारे साथ अपनी गजलें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, लाभ सिंह जी की इस विदाई के साथ आइए अब सुनते हैं उनके दिल के बेहद करीब चौथी गजल, मरहूम जगजीत सिंह की मखमली आवाज में। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। लाभ सिंह जी की पसंद पर जगजीत सिंह की ये खूबसूरत गजल आइए सब मिलकर सुनते हैं।

जगजीत सिंह जी की इस सदाबहार और अमर गजल के साथ आज का हमारा ये खास शो अल्फाज से एहसास तक की मंजिल तक पहुंचता है। रिटायर्ड सूबेदार लाभ सिंह जी का फौजी अनुशासन, उनकी जमीन से जुड़ी यादें, बेटियों के लिए प्यार और उनकी मखमली शायरी, ये सब आज हमारे दिलों में लंबे समय तक रहेगा। चलते चलते लाभ सिंह जी की शख्सियत के नाम दो सतरे नजर करती हूँ। मुलायजा फरमाए, सरहदों पर जो मुस्तैद रहे वो मोम सा दिल भी रखते हैं, सरहदों पर जो मुस्तैद रहे वो मोम सा दिल भी रखते हैं, बंदूकों के साए में भी जो सुरों के दिए जलाते हैं। अल्फाज नहीं ये रूह की आवाज हुआ करती है, अल्फाज नहीं ये रूह की आवाज हुआ करती है, जो जमाने के दर्द को अपना बनाकर गुनगुनाते हैं। इस हसीन एहसास के साथ अब वक्त हो चला है कि मैं आपकी हमनफस, आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय आपसे रुख्सत ले लूं। कल ठीक इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए एहसासों और नगमों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा और अपने देश और नेचर से, प्रकृति से प्यार भी करते रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, आदाब, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यही खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी अब होने लगी है। खासतौर पर देखा जाए अब मानसून भी आने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे हमारे मौसम विभाग कह रहा है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो 15.2 mm की बारिश अभी तक हो चुकी है, तो खुशी की बात है कि इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान साथी अपनी भरपूर तैयारी करें, पानी संरक्षण को लेकर काम करें। खासतौर पर अगर हम देखें कि जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक सा कराएं, समतलीकरण करा लें, मेड़बंधान कराएं, तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं। और किसान साथी तालाब अगर है तो उसका जीर्णोच्चारण भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: जी हाँ, मानसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मानसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मानसून के चाल के बारे में बताएंगे, मानसून कैसा रहने वाला है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे, यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मानसून भी है फसलें भी हैं तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मानसून के बारे में। तो इस बार मानसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मानसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घावधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मानसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहाँ किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहाँ किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
4: जो आप काम करने को कह रहे हो,
2: रिपोर्ट देखिए जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मॉनसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
5: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वैरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
2: 25 के बाद
5: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है, अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
2: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
6: हम देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर ना जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
2: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप, इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
7: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं। तो इसमें सभी फसलों को सामान रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो प्रबंधन करना चाहिए फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सीवेज जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें जो आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं, या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन

0: पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पॉन्ड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
1: बिल्कुल अनंत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले। जो अनंत जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात कर रहे हैं, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, प्यास धरती की नहीं बुझती।
2: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफॉल एरिया बोलते हैं कि जहां बारिश कम होता है उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा, यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है उसका इस्तेमाल करें।
1: जी यानी जनमणि जी, जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं पूर्वानुमान होते हैं इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचे कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
2: और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खाद या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
1: जी जी।
2: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
1: जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं?
3: देखिए बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदियों को करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है इसके बिना खेती नहीं की जा सकती।

चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है, पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है, उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है, या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं, या हो सकता है उनके कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बनेगी। और यदि कोई दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता

0: हल्का, तो उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
1: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
0: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की, और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार ही चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालें हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे, फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
0: नहीं, समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पे पानी देने की जरूरत पड़ती है। धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकल रही अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और बालियां इनिशिएशन से बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम, मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पे लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पे लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
1: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
2: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए। उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है। बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही है उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपका
1: मिट्टी को भी
2: दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा।
1: जी, जी।
2: और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, जलीय जंतु हैं,
1: प्रदूषित हो जाएगा, कंटैमिनेट हो जाएगा।
2: तो आपका देखो, एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं, ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है।

0: क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है
1: जी,
0: तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
1: बिल्कुल देखिए, यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मॉनसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा, इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में, ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मॉनसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है। एक है, एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: बिहार में
1: जान भी गई,
2: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में
1: जी। और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान है मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं, जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोस ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या हमारे
1: हरी खाद वगैरह,
3: सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है, वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपकरणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
3: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं, बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंत, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती है, तो अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और इसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहे।
4: जी जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं, और विभिन्न जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान प्रसाद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पे आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप इसमें
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
2: लाइटनिंग
1: का है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रिडिक्शन में पता चल सकता है।
2: देखिए बिजली का जो प्रिडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है, तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है आगे जाएगा, तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग की वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है, और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल।
4: जी इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको भी बाधा करती है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहे, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ाव होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयराम मनी जी, जैसा कि हम मॉनसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स की किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मॉनसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मॉनसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मॉनसून क्या है?
2: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा, तो हमारा भारत का ऐसा नेचर मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाए और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसम राम है चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है, 2500 मिलीमीटर एक्चुअली 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसीलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी शिवेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से बताएं?
3: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है धान है सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने
1: हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
3: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट
3: धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है, तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें। और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। अब साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए, तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन मक्का है ज्वार है बाजरा इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा बाहर नहीं जाएगा, और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: गांव का पानी गांव में ही रहे।
3: तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: सफेद सोना भी कहा जाता है।
3: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पे लगाएं। रेज बेड पे लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं, चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके वो भी लगा सकते हैं किसान भाई। तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बनाकर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम
1: आता है। और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहे समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसा कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस तरीके से?
3: लगभग जो है ये 5-8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती हैं। तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं या किसी को इंसेक्टीसाइड डालना है तो उसके खूड के अंदर चलकर डाल सकते हैं और जो एक्सेस पानी है वो खूड के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है, हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है?
4: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय से ले सकते हैं और जब मौसम आपका अच्छा है मतलब बारिश नहीं हो रही है उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव न करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा होती है वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है और जो पिछले कई वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनसे भी ये पता चला है कि अगर मानसूनी वर्षा, जैसे हम एक तो सिंचाई के रूप में पानी दे रहे हैं, दूसरा आपका जो मानसूनी वर्षा हो रही है, तो अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है। अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की। तो नहीं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है, फसल का चुनाव उसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को नवीन क्रॉप है जैसे धान है या कपास है या गन्ना वो वाली फसलें लगा सकते हैं, और अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं, और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आप कर सकते हैं। इससे आपका नई रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी और आपकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो है बाजार भाव भी अच्छा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसा आप पूछ रहे थे ना कैसा इंसेक्ट और डिजीज का प्रबंधन करें, और क्योंकि जैसा डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आती हैं, तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के हैं वहां से वो सलाह लेते रहें, और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते रहें, सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें, और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें, और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, एक भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक परियोजना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सलाह चलती है, तो ये हर केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी ये जानकारी जो है आप हर शुक्रवार और हर मंगलवार को ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, आगे आने वाले दिनों में क्या करवट बदलेगा, और मौसम आधारित कृषि प्रबंधन चाहे वो कीड़े
1: मतलब वो एग्री एडवाइजरी भी मतलब साथ साथ कृषि सलाह भी रहती है
4: आप वहां से ले सकते।
1: बिल्कुल। तो देखिए कई तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए कि उन्हें सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप कृषि में अनुशासन के साथ नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको फसलों के रूप में देखने को मिलेगा, यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ है। छोटा सा ब्रेक।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें। तो आपको किस तरह का फर्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप?
2: देखिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूं, कुछ राज्यों हैं जहां जो पेनिट्रेशन है, जिसको माना जाता है, बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है, जैसे वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है। लेकिन कुछ एरिया है, जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहां जहां नेटवर्किंग कम है, फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है। लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था, नियरेस्ट कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां मेंबर बन जाए, तो आपको देखिए एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था, और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले
1: जी
2: वहाँ दर्शन कर, वहाँ जाके विजिट करें
1: और
2: डिटेल उनसे ले,
1: विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे।
2: दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए, बट खुद का सेफ्टी के लिए भी। जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से 400 मिलीमीटर 500, पिछले साल देखे होंगे कि
1: काफी नुकसान भी,
2: तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नाव कास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी।
1: बिल्कुल। डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर मानसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मानसून का प्रेडिक्शन होता है तो अच्छा हुआ तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़बड़ रहता है तो मुरझा जाता है, तो इतना मतलब इतना प्रभाव है मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसे किस तरीके से उसका असर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में?
3: देखिए, मानसून का जो है हमारी खेती पे बहुत आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है हर मामले में, चाहे वो खाद्यान्न का उत्पादन है, चाहे दलहन उत्पादन है, चाहे तिलहन उत्पादन है, चाहे हमारी गन्ने की फसल है, चाहे हमारी धान की फसल है, सभी फसलों के लिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन होता है हमारा, और बरसात के दिनों में यदि पानी का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं और बरसात की सूचना मिल जाती है किसानों को, तो उनके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है
1: अच्छी,
3: हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती। तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे एक्सपोर्ट में है, चाहे हमारा किसान की खुशहाली है, चाहे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, तो उस सब में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये बहुत ही मतलब जरूरी है, और ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना और समय से होना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार।
1: डॉक्टर अंता, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जैसे कि अभी बताया कि मानसूनी वर्षा से काफी फायदा होता है, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पूर्वानुमान है उसकी जो सटीकता है उसमें काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम देते थे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो हम देते थे IMD से जो मिलता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाए जाते, लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया है।
1: बिल्कुल, तो
4: जैसे ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो है एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है, तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, सटीक होगी, और उससे जो किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल, तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपने अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना हमारे विशेषज्ञों द्वारा, ये जानकारी आपको दी जा रही थी और खासतौर पर उन्होंने मौसम और खेती को हम किस तरीके से देख सकते हैं, खासतौर पर मौसम आधारित हम लोग खेती करते हैं कि अगर सामान्य से अधिक वर्षा हुई या सामान्य वर्षा हुई किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, किस तरीके से हमें फसल को बोना चाहिए, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। हमारा वक्त हो चुका है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफ़ी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती, चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं, कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं, साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नज़र डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफ़ी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वे ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफ़ी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है, मौसम विभाग क्या कहता है। वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना, उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आपला रेडियो आपली बात है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आपला रेडियो आपली बात है।
1: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
7: कपास नगदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुआई करें। बुआई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है, साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: हमारा पशुधन पर, हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में।

0: राज्यों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
1: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में, ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
0: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते, जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
1: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
0: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
1: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहां ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा, और धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
0: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा

पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है। इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों के लिए, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महाबास सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉलीहाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आइए दोस्तों, इस बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो कि नए टैलेंट्स के लिए मौजूद है, नए संगीतकारों के लिए, नए गायकों के लिए, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के कलाकार प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ जो टैलेंट, जो गायिका है, वो है अर्चना मोरे जी। बाकी जाहिर सी बात है, अर्चना जी अपने बारे में खुद बताएंगी, हम उनकी पर्सनैलिटी को समझेंगे, उनके गीत सुनेंगे, उनके साथ बातें करेंगे। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द होल टीम ऑफ 90.8 FM, और उमेश जी को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए रेकमेंड किया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो श्रोतागण अपना कीमती समय देके इस प्रोग्राम को सुन रहे, तो उनका भी दिल से शुक्रिया। मेरा नाम है अर्चना मोरे, जैसे कि आपने बताया। ओके, सो मैं अंधेरी वेस्ट में रहती हूँ। घर में मेरी दो बेटियां हैं, हस्बैंड है मेरे
0: जी।
1: और मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है
0: जी।
1: और साथ साथ उसके बाद में मतलब पढ़ाई का शौक था, तो मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर भी कर लिया। हम जुड़वा बहने हैं और दो मेरे भाई हैं, एंड परवरिश मेरी बुआ और मेरे मामा जी के यहाँ पर हुई थी।
0: वेरी नाइस।
1: और अगर गाने की, अगर हम लोग मेरा जो गाने का जो सिंगिंग करियर जो है उसके हिसाब से अगर बात करें, तो स्टार मेकर पर मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 6-7 सालों से। वहाँ पर मेरी जो ब्लिस फैमिली है, वहाँ पे मैं एज अ मेन वोकलिस्ट वहाँ पर हूँ। कुछ सिंगिंग प्रोग्राम्स के लिए मैंने मतलब एज अ जज भी मैंने वहाँ पर काम किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर YMCA यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है, उनके साथ में, उस एनजीओ के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पे हमारा बॉयज होम है, बच्चे जो है ऑर्फन या फिर सिंगल पेरेंट वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ में हम वहाँ पर काम करते हैं। सो ये मेरा एक शॉर्ट सा परिचय है, छोटा सा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना जी। तो दोस्तों, आपने सुना अर्चना जी का परिचय, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत भी अर्चना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा गीत। चलिए अर्चना जी, बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन से ही अगर सोचा जाए, मैं सोचती हूँ तो हाँ जी, मैं बचपन से ही मैं इंजीनियर ही बनना चाहती थी, जो कि बन गई।
0: वेरी नाइस।
1: एक्चुअली हाँ, 1987 में, मतलब जब मैं सेवेंथ में थी, तब हमारे स्कूल में एक ऐसे प्रोग्राम स्कूल की ओर से कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे वो लोग एक मतलब कंप्यूटर्स वो सब लेके आए थे। तो उस वक्त वो जो सीआरटी डिस्प्लेस बड़े बड़े हुआ करते थे, वहाँ पे डॉस सिस्टम, मतलब विंडोज भी तब मेरे ख्याल से नहीं आया था। तो उस डॉस वर्जन पे हमें कुछ क्विक बेसिक की प्रोग्रामिंग वो सब उन लोगों ने कुछ इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो तभी से एक क्रेज था कि हाँ, मतलब कुछ नया है, कुछ अलग है, तो ये मुझे करना है। ये एक रीजन था मेरा इंजीनियरिंग करने के पीछे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि उस वक्त क्रिकेट भी काफी, मतलब लोग शौक रखते थे क्रिकेट देखने का, तो उस वक्त अनिल कुंबले जो थे वो मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे, और बाद में पता चला कि भाई वो भी एक इंजीनियर है। तो ये क्रेज कुछ और थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया।
0: ओके
1: और हाँ जी, तो उस हिसाब से फिर आगे चल के वही, मतलब मैंने उस पैशन को अचीव किया।
0: ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दोस्तों आपने सुना कि अर्चना जी बचपन में क्या बनना चाहते थे, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्चना जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अभी हम बचपन में ही हैं और बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी में आपका फेवरेट टीचर कौन था, कौन थे और क्यों?
1: फेवरेट टीचर्स तो किसी मतलब मैं किसी एक का तो नाम ऐसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का हम बोलते हैं ना योगदान होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए या हमारे फ्यूचर के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो। किसी विषय स्पेसिफिक विषय में अगर हम लोग अगर रुचि डेवलप करते हैं, अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, तो श्योरली वो सारा क्रेडिट जो है वो मेरे हिसाब से हमारे टीचर्स को ही जाता है। तो इस हिसाब से स्कूल में हमारे मुड़े सर थे, फिर जो मतलब मैथ्स पढ़ाते थे, तो मैथ्स में मैं काफ़ी रुचि रखती हूँ। और इंग्लिश में इंग्लिश की जो हमारी टीचर्स टीचर थी जाधव मैडम, और कॉलेज में भी शिंदे सर थे जो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और तो ये वो लोग हैं ना कि उन्होंने अपना फ्यूचर नहीं हमारे फ्यूचर के लिए काम किया। जैसे कि एक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में आजकल हम लोग देखते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में काफी लोग काफी प्रोफेशनल्स ही हो गए हैं टीचर्स। तो ये वो दौर था, हाँ ये वो दौर था टीचर्स का कि काफी डेडिकेटेड टीचर्स हम लोगों को नसीब हुए, और शायद उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीचर्स। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी।
0: बहुत बहुत खूब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये शिक्षक लोग, आपके ये टीचर्स भी आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। मैं अगला गीत आपके सारे टीचर्स को ही डेडिकेट करना चाहूंगा। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अर्चना जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आप एक सिंगर हैं, एक गायिका हैं, तो किसी न किसी गायक से आप जरूर इन्फ्लुएंस्ड होंगी, प्रभावित होंगी, तो आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों?
1: पसंदीदा गायक भी बहुत सारे हैं, बट उनमें से मतलब कुछ चुनिंदा से कुछ लोग हैं कि वो काफी मतलब दिल के करीब है मेरे। फिर भी जैसे लता जी है, किशोर साहब है, रफी साहब है, आशा जी है, इनका तो कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। तो इनके इनको हम लोग साइड ट्रैक करके तो हम लोग बॉलीवुड का म्यूजिक जो इसको हम लोग इमेजिन ही कर पाएंगे। ये एक सही मतलब ये तो मतलब एक सही बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यशुदास जी जो है वो मुझे उनकी आवाज मुझे बड़ी पसंद है। मतलब उनकी आवाज का एक ऐसे अलग ही टेक्सचर है, मतलब एक रिदम वाली आवाज है। और अपार्ट फ्रॉम दैट साधना सरगम जी भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उनकी भी आवाज ना काफी एक बैलेंस्ड उनका वॉइस है। मतलब बोलते हैं ना कि एकदम रफ भी है और ओवर स्वीटनेस भी नहीं है उसमें, एकदम बैलेंस्ड काइंड ऑफ उनकी वॉइस है। और मन्ना डे, ये तीनों जो गायक है मतलब मुझे उनकी सिंगिंग बड़ी पसंद है।
0: क्या कहा आपने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मन्ना डे मेरे भी फेवरेट फेवरेट सिंगर हैं। मैं उनको हमेशा सबसे ऊपर रखूंगा। उनकी गायकी, उनकी आवाज में जो लरस थी, जो पकड़ थी, जो ठहराव था, वो अमेजिंगली किसी और गायक की आवाज में मुझे मिला ही नहीं। मुझे याद है एक कोई किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि जब पड़ोसन फिल्म बन रही थी और उसमें एक गीत जिसमें किशोर कुमार और मन्ना डे को गाना गाना था, तो उस गाने में मन्ना डे जी ने एक चतुर्नार, करेक्ट, तो मन्ना डे ने वो गाना गाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है फिल्माया गया वो हार जाता है और जो जीतते हैं वो किशोर कुमार थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। तो किशोर कुमार ने उनके पैर पकड़ लिए कि दादा मेरे लिए प्लीज आप ये गाना गा दीजिए। बड़ी मुश्किलों से मन्ना डे तैयार हुए थे क्योंकि मन्ना डे प्योर क्लासिकल म्यूजिक में बिलीव करते थे। किसी भी गीत के साथ उन्होंने कभी कोई नाइंसाफी की ही नहीं। तो इस वजह से मन्ना डे मेरे भी फेवरेट फेवरेट सिंगर हैं। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुने अर्चना जी की ही आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अर्चना जी, एक आराम से कंफर्टेबल फन क्वेश्चन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली खाने की चीज आपने क्या बनाई थी, आपको याद है, और वो कैसी बनी थी?
1: खाने की चीज, वैसे अगर मेरा खाने का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो आई यूज्ड टू बी अ बुकवर्म, काफी पढ़ाकू लड़की थी घर में।
0: okay.
1: और मेरे, हाँ जी, तो मेरी फूफा जी और मेरे फूफा जी और मेरी मतलब आत्या मामा, मैं उनको कहती हूँ, तो उनके घर पे बड़े लाड़ प्यार से मैं बड़ी हुई हूँ। तो किचन के साथ में कांटेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन मेरी कुकिंग का सारा क्रेडिट जो है वो मैं मेरे मामा जी को देना चाहूंगी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मैंने कांदा पोहे बनाए थे।
0: okay.
1: और सारे, हाँ जी, सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे मामा जी ने मुझे दिए थे कि बेटा ऐसा कर, बेटा वैसा कर, और बना लिए थे मैंने। मुझे तो उसका टेस्ट तो याद नहीं, लेकिन हम कहते हैं ना कि अपना बच्चा जब पहली कोई चीज पहली बार एक्सपीरियंस करता है तो उसका वो कुछ अलग ही ठाट होता है। नहीं तो शायद वो अच्छे ही बने होंगे, क्योंकि मेरे मामा जी की आंखों से वो जो खुशी छलक थी मतलब मैंने देखी, तो भाई आज जब मेरी बच्ची, मेरी लड़कियां जब ऐसे कुछ खुद से बनाकर मुझे परोसती है तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि वो क्या क्या मतलब वो क्या खुशी होती होगी, मतलब उन्होंने क्या, किस खुशी को उन्होंने उस वक्त महसूस किया होगा। तो हाँ जी, कांदा पोहे ही मैंने बनाए थे और आज भी मेरे हिसाब से मेरे हाथ के कांदा पोहे सबको पसंद आते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बात अर्चना जी। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं अर्चना जी का गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया अर्चना जी, जैसे अभी अभी आपने जिक्र किया कि आप एक बुक वॉर्म थी, आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, तो टेक्निकल बुक्स के अलावा, इंजीनियरिंग की बुक्स के अलावा, मैथमेटिक्स की बुक्स के अलावा, आप अपनी एक फेवरेट बुक का नाम लीजिए ना। कौन सी फेवरेट बुक है आपकी और उसके ऑथर कौन है?
1: मेमोयर ऑफ गीशा एक जो बुक बनी है वो मेरी काफी, मतलब मैंने दो बार मैं पढ़ चुकी हूँ, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। सो अभी मुझे ऑथर ऑन द स्पॉट में याद नहीं कर पाऊंगी, बट ये एक जापानीज नॉवल था, बहुत ही खूबसूरत। तो मतलब मैं रिकमेंड भी करना चाहूंगी कि अगर किसी को चांस मिले तो जरूर पढ़े उसको।
0: आप उसका नाम फिर से लेंगे हमारे लिए?
1: द मेमोयर ऑफ गीशा।
0: द मेमोयर ऑफ दीशा, डी
1: गीशा,
0: जी एच आई।
1: हाँ, गीशा मतलब ये वहाँ की वो एक वहाँ का पे कल्चर है ना, वो लोग वो किमोनो पहन के वो चेहरा जो है वो सफेद भी वो चेहरे पे लगाते हैं, और उनका एक ट्रेडिशनल डांस होता है वो फैन लेकर।
0: okay.
1: तो वो एक, हाँ जी, तो उनके लाइफ के ऊपर, वो गीशा के लाइफ के ऊपर वो बेस्ड वो नॉवेल थी, बहुत सुंदर नॉवेल थी। एक्चुअली मैंने मूवी पहले देखी थी और बाद में उस नॉवेल को पढ़ा था।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्चना जी की ही आवाज में।

0: आगे बढ़ते हैं अर्चना जी, एक दूसरा फन क्वेश्चन। अगर आपको 24 घंटों के लिए इनविजिबल कर दिया जाए, सिर्फ 24 घंटों के लिए, तो क्या करना चाहेंगी आप उन 24 घंटों में?
1: 24 घंटों में अगर मैं इनविजिबल हो जाती हूँ तो मैं ट्रैवल, टाइम ट्रैवल करना पसंद करूंगी, मेरे बचपन में जाना चाहूंगी।
0: Alright.
1: बहुत सारी चीजें, हाँ जी, बहुत सारी चीजें जो हल्की फुल्की सी उस वक्त, मतलब कभी लगा भी नहीं था कि ये जो लाइफ में जी रही हूँ आगे चल के ये मेरे लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाएंगे, तो वो जो लाइफ टाइम मेरे जो छोटे छोटे मेमोरीज, जो चंक्स है मेरे बचपन के, तो मैं उनको मैं विटनेस करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मेरे आटे मामा के यहाँ पे पली बड़ी हुई थी, तो मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी का घर, नाना नानी का घर, तो ये सारी जो यादें उनसे जो जुड़ी हुई है, मेरी बुआ लोग जो सारी छोटी छोटी थी, और हम लोग हमारे घर में मैं और मेरी बहन, हम लोग मतलब पहली बच्ची आए, मतलब जनरेशन हमसे स्टार्ट होता है, नेक्स्ट जनरेशन, मेरी मम्मी के मायके की तरफ से भी और मेरे पिताजी की तरफ से भी, तो काफी लाड़ प्यार था। तो मेरे ख्याल से मेरे सिंगिंग का जो मेरी जो हॉबी है या गाने सुनने की जो मेरी जो एक जैसे कि एक लत लग गई थी अच्छे अच्छे गाने सुनने की, तो शायद उसका जो ओरिजिन है वो कहीं पे वहाँ पे बसता है। मतलब मेरे दादी का जो आंगन हुआ करता था, वहाँ पे एक लोहे की एक ऐसी पलंग हुआ करती थी जहाँ पे हम दोनों बहनें ऐसे सोकर आसमान को, खुले आसमान को देखा करती थी, वहां पे वो उड़ते हुए पंछी, और दूर से सरगम मूवी के गाने, और मुझे अभी भी याद है, और निकाह के गाने, दूर से उसकी आवाज ऐसे आती थी, मतलब तो हम काफी ऐसे ध्यान से सुनते थे, क्योंकि ऐसे बीच बीच में वो कुछ वर्ड्स उसमें से गायब हो जाते थे, क्योंकि बहुत दूर से वो आवाजें आती थी, तो ये काफी मतलब बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ करता था वो। तो उन चीजों को हम बोलते ना कि फिर से ऐसे जीने का मन करता है। छह छह महीनों में जब मैं जाती थी तो फिर मेरे मम्मी पापा जब मुझको देखते थे तो उनकी आंखों में एक अलग सी खुशी हुआ करती थी। जो छोटे दो भाई हुआ करते थे, वो मतलब मेरे दोनों भाई छह छह महीने के बाद में अचानक से, मतलब उस बीच के स्लॉट में मैं उन्हें अचानक से बड़ा ऐसे बड़े होते हुए मैं उनको कभी देख नहीं पाई, तो ये सारी चीजें मेरी कुछ छूट गई है। तो बचपन तो काफी सुंदर था, तो ये सब चीजें हैं, और छोटे बच्चों की खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में समाई हुई रहती है। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि वो निरमा वॉशिंग पाउडर का वो पानी का झाग, उससे कपड़े हम लोग डुबोते थे, वो झाग के साथ में खेलना, तो काफी छोटी छोटी चीजें थी। मेरे चाचा की साइकिल की कैरी पे बैठ के हम लोग बाजार जाते थे, तो मतलब पता नहीं, मतलब ये अगर फिर से अगर जीने को ये सब मिले, मतलब ये जो पल है, तो मुझे लगता है। और एक और चीज, मतलब ये सब बचपन जो है, मतलब जब मेरी, हम बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर लम्हे में आके ये चीजें छूट जाती है हमसे, तो एक वो भी पल की जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ, तब मैंने देखा था, मैं तो बेहोश थी, फिर जब मैंने मतलब होश में आने के बाद मैंने देखा था कि मेरे हस्बैंड उसको अपनी गोद में लेके बैठे हैं, उसको देख रहे हैं, तो दैट वॉज द मोमेंट की जब फील हुआ कि अरे अभी अपना बचपन छूट गया, अभी हम लोग बड़े हो गए, तो ये सारे वो जो पल है ना, इनको मैं वापस विटनेस करना चाहूंगी।
0: बहुत बहुत खूबसूरत।

0: आगे बढ़ते हैं अर्चना जी, आपकी जीवन में आज तक की डेट में सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला है?
1: तोहफे तो काफी सारे मुझे मिले हैं, लेकिन अगर सबसे बेहतरीन अगर मैं तोहफा या फिर सबसे, तो मेरे मेरे मामा जी की दी हुई जो घड़ी है वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि शादी के बाद में, मतलब बहुत साल के बाद में, मतलब जब मामा जी एक बार मुझे मिलने आए थे, और पता नहीं उनको, मतलब उन्होंने बोला था कि ना बेटा अच्छे से रहना, पता नहीं अभी हम लोग बूढ़े हो चले हैं तो मुलाकात होती है नहीं होती है, मुझे पता नहीं उनको कैसे पता चल गया था। और उस वक्त वो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी बहन के लिए, हमारे लिए तीन घड़ियां लाए थे। और बाद में विद इन फोर फाइव डेज मतलब उनकी डेथ हो गई, तो वो घड़ी आज भी मेरे साथ में है। और जब, मतलब वो मेरे मामा जी की मेरे लिए सौगात है, और जब भी मैं उस घड़ी की तरफ देखती हूँ तो फील होता है कि भाई ये समय कितना कीमती है। तो बड़ा समय, मतलब सच में बहुत वैल्यूएबल होता है, तो हमको उस पर से परेशान और दुखी होकर हम लोग ना बिताए तो ही बेहतर है।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: अर्चना जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी आपने कोई छोटी मोटी चीटिंग की है, कोई एग्जाम में, दुकान पर, या कुछ ऐसा कुछ?
1: अरे बाप रे, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं आया। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कि जो बिना, वो बोलते हैं ना, बिना टिकट खरीदे कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाएगी भी नहीं, और अगर टिकट खरीदने के बाद भी अगर टीसी दिख गया तो भी डर जाएगी कि अरे बाप रे, अगर टीसी अगर मुझे बुलाता है और अगर एन वक्त पे अगर मुझे मेरा टिकट नहीं मिला मेरे बैग में तो मेरा क्या होगा
0: वाह,
1: तो नहीं, कोई सवाल ही नहीं आता था चीटिंग का। हाँ, एक दो
0: चलिए,
1: बार मुझे चांस मिल गया था बट नहीं कर पाई
0: ओके,
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अर्चना जी की आवाज में।

0: और अर्चना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम के उस जगह आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहिए।
1: सुनने वालों को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी गाते हैं तो दिल से गाइए। और मैंने बहुत बार देखा है जैसे कि स्टार मेकर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग जब अपना वीडियो बनाते हैं तो एक रिस्पेक्टफुल माहौल भी वहां पर आपको होना चाहिए आपके को सिंगर के साथ। किसी का डुएट जब हम लोग गाते हैं तो बोलते ना कि एक प्रॉपर आपका एक पोस्चर होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, आगे टेढ़े बैठ के कैसे भी आप, तो उसमें क्या होता है कि आपके को सिंगर का भी कहीं ना कहीं पे आप सम्मान नहीं रख रहे हो। और जैसे भी आए दिल में आप गाना बोलते ना कि प्रॉपरली प्रिपेयर होने के बाद में ही आप कोई भी आउटपुट देना, ट्राई टू गिव यू 100% टू दैट सॉन्ग, क्योंकि वो सॉन्ग के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, वो सॉन्ग राइटर से लेके, वो म्यूजिक कंपोजर से लेके, जो सिंगर होते हैं, बहुत सारी चीजों से गुजर के वो सॉन्ग हमारे पास आता है। तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ में अगर आप मतलब गाना अगर आपको होगा तो रिस्पेक्ट के साथ में गाएं तो ज्यादा बेहतर है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमने आपके गीत सुने, आपसे बातें की। थैंक यू सो मच।
1: थैंक्स टू।

शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। मैं हमेशा ये मानता हूं जो भी कलाकार, जो भी प्रतिभा, जो भी टैलेंट हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो अपने आप में बहुत प्रबुद्ध, बहुत एक्सपर्ट, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सीखा होता है अपने पैशन से सीखा होता है। इसी तरीके के पैशनेट सिंगर, एक प्रतिभा, एक गायक हमारे साथ हैं। मैं शैलेंद्र कुरने जी का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम में। बाकी मैं शैलेंद्र जी से ही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सभी सुनने वाले परिवार को बात करें, अपने बारे में आप ही बताएं कि आप कहाँ हैं, भला क्या करते हैं आप। शैलेंद्र जी।
1: थैंक यू सर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र प्रकाश कुरने है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी मेरी कोल्हापुर से ही हुई। मैंने MBA किया है और अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट एरिया मैनेजर, इस पोस्ट पे मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई जॉब वेरी मच।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, जाहिर से बात है शैलेंद्र जी ने, जो मुझे समझ में आया कि 25 साल पहले MBA किया, तो मैं मानता हूं और हम सभी मानेंगे और देखा जाए तो आज की नई जनरेशन भी मानेगी कि उस जमाने की एजुकेशन बहुत बहुत हार्ड थी, बहुत मुश्किल थी और बहुत अच्छी थी। जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं जिन्होंने उस जमाने में एजुकेशन ली होगी वो सब इस बात से सहमति जरूर जरूर दिखाएंगे। बहुत खूब। चलो शैलेंद्र भाई, ये तो बात तो आपकी होगी कि आप कहाँ हैं, क्या आपने एजुकेशन की और क्या आपने क्या काम आप कर रहे हैं। थोड़ा सा बात, क्योंकि गीत संगीत की है, गानों की है, सॉन्ग्स की है, तो थोड़ा सा हमें अपने संगीत के बारे में भी बताइए कि किस तरह का संगीत आपको पसंद है। देखिए शैलेंद्र भाई, 99.99% लोग कहते हैं हमें तो संगीत पसंद है, फिर वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी देखिए किसी हम डिनर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बफे में लगाए होती हैं बड़ी सारे व्यंजन, लेकिन उसमें से कोई एक व्यंजन होता है जो हमें बड़ा पसंद होता है।
1: बिल्कुल
0: उसी तरीके से संगीत में किस तरीके का संगीत आपको पसंद है। अगर मैं नाम लूं, क्लासिकल, भजन, गजल, फोक म्यूजिक कह लीजिए या बॉलीवुड कह लीजिए सिंपल, या हॉलीवुड कह लीजिए या फिर महाराष्ट्र का जो म्यूजिक है या कर्नाटक म्यूजिक है
1: जी,
0: तो कौन सा म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है अपने?
1: जी वैसे देखा जाए तो मुझे बॉलीवुड म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक में ये सभी मिक्स संगीत आता है उसमें, जो भी अभी हमने नाम लिए, क्लासिकल हो, फोक हो, वो सब उसी में ढल जाता है। तो बॉलीवुड संगीत में मुझे बहुत रुचि है, बचपन से ही मैं उसको सुनते आ रहा हूँ, सो डेफिनेटली माई चॉइस विल बी
0: बॉलीवुड म्यूजिक।
1: बॉलीवुड म्यूजिक
0: बहुत खूब, अमेजिंग। जाहिर से बात है इसी वजह से तो बॉलीवुड म्यूजिक पूरी दुनिया पर राज करता है। बहुत ज्यादातर जो लोग हैं, पॉपुलेशन है जो म्यूजिक पसंद करती है, उनको बॉलीवुड तो पसंद आता ही आता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, फिर आइए सुन लेते हैं शैलेंद्र जी के ही गाए हुए ये गीत, जिससे हमें शैलेंद्र जी के म्यूजिक के और पास जाने को मिल जाएगा। पेश करता हूं

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे गीत और बहुत ही प्यारी शुरुआत। चलिए थोड़ा सा हम आपके संगीत के बारे में जान गए, अब थोड़ा सा और समझते हैं और उसके बाद हम लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी मजा आएगा। तो सबसे पहले आपके संगीत के बारे में, आपने कहा आपको बॉलीवुड म्यूजिक बहुत पसंद है, तो
1: जी सर,
0: पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन है?
1: मेरे सर, वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लेजेंडरी सिंगर्स, यानी कि मोहम्मद रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, ये तो हमारे लेजेंडरी सिंगर है मेल प्लेबैक में, फीमेल प्लेबैक में आशा ताई, लता जी, एंड ऑब्वियसली अभी जो जिनका देहांत हुआ एस जानकी जी, सो उन सबको मैं ड्यू रिस्पेक्ट करके, लेकिन मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो है एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब से।
0: ओहो, ओके,
1: यस, आई एम वेरी वेरी मच, आई लव हिम, ही इज माय गॉड एक्चुअली। तो मैं उनको सर, मेरे पसंदीदा गायक है सर वो।
0: तो एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब शैलेंद्र साहब के सबसे सबसे पसंदीदा गायक हैं। दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा शैलेंद्र भाई, तो आप ही ने बता दिया कि एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब का कोई ऐसा गीत है जो बस आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग?
1: जी, वैसे तो उनके बहुत ही जितने भी उनके गाने गाए हैं बॉलीवुड में हिंदी में, वैसे मैं कन्नड़ा या मेरा उतना लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता, कन्नड़ या तमिल तेलुगु, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में जो संगीत है उसमें जो उनका मेरा पसंदीदा जो गाना है वो है उनका पहला पहला प्यार
0: जी।
1: जो हम आपके यहाँ कौन में उन्होंने जो गाया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही शैलेंद्र जी। चलिए हम आगे बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने सभी ऑडियंस को आपके गीत सुनवाते हैं और इसके बाद आपके पास वापस आता हूं मैं आपको और बेहतर समझने के लिए।

0: बहुत खूब। चलिए, आपके संगीत के बारे में बात हो गई, आपके गीत तो अब गूंजते ही रहेंगे, चिंता मत करिए। आपके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो मुझे शैलेंद्र भाई ये बताइए, आपको आप ही के अंदर, आपकी ही पर्सनालिटी में सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
1: जी, मुझे मेरे बारे में एक अच्छी बात ये लगती है कि मैं एक जेंटल पर्सन हूँ, जो जेंटल पर्सन हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अगर मेरे अंदर जो ऐसा एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, तो मेरे सामने वाला जो आदमी है वो भी एक इंसान है
0: जी।
1: तो मुझे उसको जानने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका दर्द जानना, उनका दुख जानना, और जितना हो सके उनको उनकी मदद करना। तो ये मेरे अंदर जो एक बोल सकते हैं कि ये मेरा स्वभाव है
0: जी।
1: तो ये मेरा स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ, दूसरों का ख्याल करता हूँ।
0: okay.
1: तो ये मेरा बहुत ही एक अच्छा स्वभाव है सर।
0: बहुत खूब। देखिए, इस सवाल को पूछने का तात्पर्य, उद्देश्य, पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम अपने कॉलर के अंदर खुद झांक सकें, और अगर हमने अपने मुंह से ये चीज कही तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग हमको उसी तरफ चलाने लगता है, और हम और बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं
1: जी।
0: बहुत बढ़िया शैलेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, और इसके बाद फिर वापस आए शैलेंद्र भाई के पास।
1: आई मिस यू ममा, आई मिस यू सो मच।

0: क्या सिखाया जिंदगी ने आपको?
1: वैसे तो सर ये जिंदगी हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है, लेकिन जो कि अभी हम इस जॉब में है या जो हमारा लाइफ चलता है, तो इस लाइफ में मैंने एक सीखा है कि हर वक्त आपका जो दिमाग है वो शांत होना चाहिए
0: जी।
1: और दूसरी बात, आपके मुंह में शक्कर होना चाहिए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? ये सही बात है, क्योंकि सर क्या है कि बिफोर ज्वाइनिंग दिस गवर्नमेंट जॉब आई वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, सो आई वॉज वर्किंग विथ वन फाइनेंशियल कंपनी, तो वहां पर मैं मार्केटिंग की जॉब करता था
0: जी।
1: तो वहां पे मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया कि वहां से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था, गलत इन द सेंस कि सामने वाले को सिर्फ मैंने अरे यार कर दो ना सिर्फ इतना कहा था। एक्चुअली दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस थिंग इज अबाउट इन द हैपेंड इन द ईयर 1999।
0: अच्छा,
1: तो उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आ गया मुझ पे कि मेरा जो पूरा मार्केटिंग का जो मेरा पेपर था, जो मुझे लीड मिलने वाले थे लगभग 25 या 27 मुझे लीड मिलने वाले थे, दैट टाइम आई वाज वर्किंग फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
0: जी,
1: और उसमें मुझे बहुत लीड मिलने वाले थे। उस वक्त मैं कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था, तो उन्होंने सब वो फाड़ दिया और मेरे मुंह पे फेंक दिया सर। एंड ही जस्ट सेड मी जस्ट स्टैंड अप एंड गेट आउट।
0: ओके,
1: तो सर ये मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा सबक है कि उस वक्त मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या गलत कहा
0: जी।
1: मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ठीक है मुझे भी और मार्केटिंग करना था, मुझे भी और जगह जाना था, कॉल करने थे, लेकिन सच में मुझसे अनजाने में गलती हो गई
0: जी।
1: तो इसीलिए मेरा उस वक्त से फ्रॉम द ईयर 1999 आज तक मैं मेरा दिमाग शांत रखता हूँ, मेरे मुंह में शक्कर ही रहती है।
0: यार बहुत अच्छी बात कही, सीरियसली शैलेंद्र भाई इससे मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि और मैं सच में तहे दिल से आपकी इस बात के लिए तारीफ करना चाहूँगा कि आपने खुल के अपनी गलती को स्वीकार किया कि मेरे से गलती हो गई। और मैं मानता हूँ ना, बोली की चोट भर नहीं सकती, गोली की चोट भर जाती है, लेकिन बोली मतलब लैंग्वेज अगर गलत इस्तेमाल निकल जाए ना तो बहुत ही नुकसान करती है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, बहुत खूबसूरत। दोस्तों आप सभी इस बात से बहुत ही प्यारा सबक ले सकते हैं जो शैलेंद्र भाई ने अपनी जिंदगी से लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शैलेंद्र भाई के ही गाए हुए इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं शैलेंद्र भाई से कुछ और लाइफ लेसन लेने के लिए। मिल तो सभी से सकते हैं बॉस, चलिए सुनते हैं ये गीत।

है राजा, राज करे ना किसी की भी परवाह नहीं, कोई यदम सामने कोई आए है किस नहीं यदम, हम जमाने में नहीं किसी से डरे, राजा राज करे हम है राजा, राज करे राजा, राज करे हम है राजा, राज करे ना किसी की भी परवाह नहीं, कोई दम सामने कोई आए है किसमें यदम, हम जमाने में नहीं किसी से डरे, राजा राज करे हम है राजा।

हौश की दई दिल है जवा रात नसी मस्त समा हौश की दई दिल है जवा ना किसी की भी परवाह नहीं कोई गम सामने कोई आए हैं जिसमें यदम हम

कम है जिंदगानी, थोड़ी है जवानी, ले ले जम के मजा, शायद कल मिले न फिर ये

0: जब पास आने का मौका आए तैयार रहो हमेशा विद क्लोज अप। इसकी जिंक फ्रेश टेक्नोलॉजी दे 18 घंटे लंबी ताजा सांसें। क्लोज अप 18 घंटे ताजगी।
1: आई मेरे साथ एक दिन बिताइए और देखिए कि मैं फायरफॉक्स की रफ्तार से कैसे चलती हूँ।